जब इन किछ कर्म ने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बुझया तब ते इसनो सब किछ सूझया तब ते इसनो सब किछ सूझया।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस घर की घर मानस जन्म अमोल है, तो इस घर की

कनड़ा कनड़ा महला पंजवा अहं तोरो मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो प्रिय प्रीत प्यारो मोरो रहाओ।

क्या कांसी क्या कर्म घर राम हृदय जो इंदर लोक शिव लोक गे जैबो हुचे तप कर बाहर ऐबो क्या मांगू किस थिर नाही राम नाम रख मन माही राव शोभा राज बिबे बड़े आए अंतन काऊ संग सहाये पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कौ कबने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन तन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमर बिन बुढ़ते अधकाई राव बंता सुत दे गृह संपत सुखदाई इन मैं कुछ नाई तेरो काल अबदाई अजा मल गज गन का पत कर्म कीने ते उत्तर पार परे राम नाम लीने सुकर कुकर जोन पर में तो लाज ना आए राम नाम छाड अमृत काहे बिख काए तज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेह तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीब खदाई ऊपर मंडल छाए मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रिन मतर मुंड मलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी करूं करते दुर्जन से पाए बाहर जोजन शतर चले ताँ था देही गिरजन खाए सर्व सोना की लंका होती रावण से अधकाए कहाँ पे हो दरबा दे आते किन में पही पराए दरबासा से करत कटगौरी जाद वे फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए दस बिरागन मोहि दस बस किन्नी पंचो का मिटनावो सतर धोए परे अमृतसर बेको मार कडाबो पाचे वरनावन पाबो अमृत बाणी कटते उचरो आत्म को समझावो राम बजर कठार मोहे है चीना कर मिनत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ए संसार ते तब ही छूटो जो माया ना निपटावो माया नाम गर्भ जोन का ते तज दर्शन पावो इत कर भगत करे जो जनतिन पौ सगल चकाइये कैत नाम देवार क्या परमो ए संजम हर पाइये मार बाड़ जैसे नीर बला बीर बला कर हला।

रमैया तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रमैया रहाओ ज्यों तरनी को इंद्र बलहा कुस बास जैसे पवरला ज्यों कोकल को अंब बलहा तुम त्यों मेरे रमन रमैया चकवी को जैसे चूसूर बलहा मान सरोवर हंसला ज्यों तरनी को कंत बलहा त्यों मेरे मन रमैया बार को जैसे कीर बलहा चात्रिक मुख जैसे जलतरा मछली को जैसे नीर बलहा त्यो मेरे मन रमैया साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बेले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बलहा त्यो नाम में मन बीठला पहल पुरिये पर डरक बना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जनो हर हर नाचंती नाचना पहल पर साबरा थून पुरस दास पुर साधमरा असगा असुसगा हर का बागरा नाचे पिंदी मह सागरा राव नाचांती गोपी जना नये ते वैरे कना तुरक नाचा परमिया चा किसवा बचोनी ये मैये एक आन जियो पिंदी उबकले संसारा परम परम आए तुम चे द्वारा कुतू को नरे मैं जी नामा है हो जी आला ते निवारना जमकारना पतत पावन माधो बिद तेरा तन ते बैमुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की सुर नर मुन जन तेनु ते दूर राओ दीन का दयाल माधो गर्भ पर हारी चरण सरन नामा बल तिहारी तनासरी भगत रविदास जी की इक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सब दीन दयाल न तुम सर अब पत्यार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे हूँ बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कबन भूल रहाओ बहुत जन्म बिसरे थे माधो एव जन्म तुम्हारे रेखे कह रविदास लग जीवो चिर पियो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन विलोकनो सर्व बाणी सो जस पूर राखो मन सो मत कर करो चरण हृदय तरो अरसन अमृत राम नाम पाको मेरी प्रीत गोविंद सिंह जिन जिन कटे मैं तो मोर महगी लई जी सटे राम सा संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कहे रविदास एक बेनती हर सिंह पैज राखो राजा राम मेरे नाम तेरो आरती मजन मरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे राम नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छटकारे नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो कास जपे नाम ले तुझे को चारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल माहे पसारे नाम तेरे की जो तलगाए पियो जियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार ठारे सगल चटारे तेरो किया तुझे क्यार पो नाम तेरा तू ही चबर टलारे दस अठा अठ सटे चारे खानी बर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग त्योहारे तनासरी वाणी भगतां की त्रिलोचन इक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण इंद सकाए पुरे गुवारी दो किरत सुकिरत थारो कर्म रे राओ संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी सनार रे कुल जान नाम दे मिलबो सारंग पान रे कर्म कर कलांक मफिसट रे विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गुरड़ ताचे बाद बाहा कर्म कर अरना पिंगलारी अनक पतक अर्ता त्रे पवन आथरी तीर्थ तीर्थ परमता लहे न पारी कर्म कर कपाल मफिसटरे अमृत ससी तेन लखनी लक्ष्मी कल पत्र शिखर सर नागर नदी चे नातं कर्म कर खार मफिसटरे तादीले लंका गढ़ पाड़ लिए रावण बन साल बिसल आंद खिले हरे कर्म कर कछोटी मभिसटरी पूर्व लो किरत कर्म ना मिटेरी कर गेहन ताचे मोहे जप लिए राम चे नामगा बत लोचन राम जी श्री सैन तू धूप दीप किरत साज आरती वारने जाओ कबलापति
ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਰਹਾਉ ਉੱਤਮ ਧੀਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਬਲਾ ਪਾਤੀ ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਨੇ ਪੂਰਮ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਿਕਾਨੇ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪੈਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੈਨ ਭਰੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਪੀਪਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਕਾਹਿਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ ਕਾਇਓ

0: दुहाई राम। जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा परन बे परम तत है, सतगुरु होए लखावे। तन्ना गोपाल तेरा हारता, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता राव। दाल सीधा मांगू कियो, हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छादन निका, नाज मंगू सत सीका। गौ भैंस मंगू लबेरी, एकता जन तुझी चंगेरी, करके गेन चंगी, जन तन्ना ले वै मंगी। जय श्री महला चौथा, कर पहला चौप दे कार, सतगुर प्रसाद। मेरे हीरे रतनाम हर बसिया, गुर हाथ तरियो मेरे माता, जन्म जन्म के किलबिक तुरे, गुर नाम दियो रे नलाता। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे नाम हर नाम दड़ाया, बिन आवे जीवन बिरथा राम। बिन गुर मूड़ पहे है मनमुख, ते मोह माया नित पाता, तिन साधु चरण से बेकबू, तिन सब जन्म काता। जिन साधु चरण साध पग से बे, तिन सबलियो जन्म सनाता। मोको दीजे कीजे दास दास आसन को, हर दया तहर जगनाता। हम अंदले ज्ञानहीन ज्ञानी, के उचाले मार्ग पंथा, हम अंदले को गुर अंचल दीजे, जन नानक चले मिलंथा। जय श्री महला चौथा, हीरा लाल मोलक है पारी, बिन गाहक मीका काका, रतन गाहक गुर साधु देख्यो, जब रतन विखानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु, गुर मिलिए हीर पराखा राम। मन मकोटि गुरु कोटि ज्ञान अंधेरा, तिन कर रतन लाखा, ते उजड़ परम बोए गवारी, माया प्यंग पिख चाखा। हर हर साध मिलो जनी के, हर साधु सर नाम राखा, हर अंगीकार करो प्रभा स्वामी, हम परे भाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख बिकाने, तुम बड़ अगम बड़ पुरखा, जन नानक हर कृपा तारी, पाखान बूढ़त हर राखा।
1: हर कृपा तार दीजे, हर कृपा तार दीजे, मत उत्तम कर लीजे मुद सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मिलायो गुर साधु, मिल साधु कपट खलाना रहाओ। गुर खिन खिन प्रीत लगावो, मेरे हीरे मेरे प्रीतम नाम पराना, बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकर, ज्यों अमली अमल लपाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी, तिन तुर पाग पराना, तिन हर चरण सरे वे खिन खिन, तिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरे ठाकर, जन बिछड़िया चिरी मिलाना। तन तन सतगुर जिन नाम दरड़ाया, जन नानक तिस करवाना। जैत श्री महला चौथा, सतगुर साजन पुरख बड़ पाया, हर रसक रसक फल पा लागवा। माया प्यंगम ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी विस हर कडवा। मेरा मन राम नाम रस लगवा, हर किए पत पवित्र मिल साध गुर, हर नामे हर रस चखवा। मिल साध गुर हर नामे हर रस चाखवा रहाओ। तन तन बड़पाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लेव उन मन लगवा। तृष्णा गुण बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायवा। तिनके भाग कीन तुर पाए, जिन सतगुर दर्शन ना पाए वा।

पावसेवै हार हार हार मीठ लगाएवा जान नानक रेण साध पग मागे हर होए दयाल दवाएवा जय श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम नवस्यो तिन मात की जे हर वांझा तिन सुंजी दे फिरे बिन नावे ओए खप खप मोए कराजा मेरे मन जप राम नाम हर माजा हर हर किरपाल किरपा प्रवतारी गुर ज्ञान दी ओ मन समझा रहा ओ हर कीरत कल युग पद उत्तम हर पाईए सतगुर माजा हाँ बरे बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो बड़ पागी सब किल विक गए गवाजा सतगुर साओ पाया बड़ दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर और तारियो मन माजा तर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा जय श्री महला चौथा सत संगत साध पाई बड़पागी मन चल तो पे अरूड़ा अनहद तुन बाजे नित बाजे हर अमृत तार रस लीरा मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा मेरा मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिलियो लाए ज पीड़ा रहाओ साकत बंद पे है माया बिख सांचे लाए ज कीड़ा हर के अर्थ खर्च नहें साके जमकाल सहे सिर पीड़ा जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु बहु शरदा लाए मुख तूड़ा हालत पालत हर

कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गवाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुर दाते, हर नानक भगत अमाहा। राम जैत श्री महला चौथा, रास रस राम रसाल सलाहा। मन राम नाम पीना लैलाहा, खिन खिन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत अमाहा राम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द लैलाहा, गुरमत पंच दूत वस आवै।

जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगनाथ जग लाहा, तन तन बड़े ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत अमाहा राम, जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जगाहा, आपे निरपो ताड़ी लाहा, आपे ही आप वरते, आपे नाम अमाहा राम, आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मत मत तत् कढ़ाए, जप नाम रतन अमाहा राम, सखी मिलो मिल गुण गवाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम अमाहा राम, आपे बड़ दाना बड़ साहा, गुरमुख पूंजी नाम बसाहा, हर हर दात करो प्रभावे, गुण नानक नाम अमाहा राम, जय श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख बेसाहा, हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत संग अमाहा राम, हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सत गुरु मलाहा, गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप अमाहा राम, सब तीर्थ वर्त जग पुन तलाहा, हर हर नाम ना पूजे पुजाहा, हर हर तोल तोल अत पारी, गुरमत जप अमाहा राम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किलविख मैल पाप तवाहा, दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक नाम अमाहा राम, जय श्री महला पांचवा। घर तीजा एक ओहंकार, सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहा जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिध बूझे, ताकि निर्मल रीत, रहाओ मात पिता बिनता सत बंधप, इष्ट मीत और पाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को ना सहाई, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, आहा करत बयानी अवदह है, ता में संतोख न पाया, हस्त रथ असव पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संगना चालियो इनमें कछुए, उठ सदायो नांगा, हर के संत प्र प्रीतम प्रभ के, ताके हर रस हर के संत प्र प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाइय, नानक इहां सुख आगे मुख उजल, संग संतन कह पाइय, जैत श्री महला पांचवा। घर तीजा दोपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद देहो संदेसरो, कहियो प्रै कहियो, बिसम पेय मैं बहुविध सुनते, कहो सुहागन सहियो, रहाओ को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब मेहियो, वर न दिसे चेहन न चेहन न

आसा मनसा पूरो जप प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबहू चूरो भुज प्रभ को जैत श्री महला पंजवा लोड़ी दा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तिसे बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरे ना काहूं बेरा नाम जपत कोट सूर उजारा बिनसे परम अंधेरा आनत नंतर सबनी जाई जो दिसे सो तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बौर न होई है फेरा जैत श्री महला पंजवा कर चौथा दोप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग्या तजी सियाण पचिंत विसारी अहो छोड़ियो है त्यागा रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परियो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरियो सागर पावक को जो संत पेठे वड़ पाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग जैत श्री महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान तरा दृढ़ियो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मैया करा रहाओ काल जाल अरमहा जंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण शरण करना पत गहो चरण आसरा नाग रूप पैयो साध संग पाव निद पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कह नानक अजर जरा जैत श्री महला पंजवा जाको पै गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सगल स्यों बाको ब्याद नकाई रहाओ दिसे सब संग रहे अलेपा ने ब्यापे उन्माई एक रंग तत के बेते सत गुर ते बुध पाई दया मैया कृपा ठाकर की सेई संत सपाई तिन कै संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई जैत श्री महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महा प्राणी अंधियारे मेहदीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा

हर प्रेम भगत को नहीं रहाओ, अनक सुख चक भी नहीं चाहत, आनंद पूर्ण पेख देहे, आन पावन जीवत मीना, बिन जल मरना तेहे, हम अनाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे, जन कमल नानक

संग पेटे पूरन पुरख सजान रहाओ प्रेम ठगौरी जन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कह न जाई कुदरत कवन हमारी लाए लड़े लाए ले लड़दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक सरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन परम सरणी उदर देहे अंध कूप ते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखन नदी जाय तरणी सुख संपत माया रस मीठे एह नहीं मन मेह तरणी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आपरणी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट न

सवाया शांत मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति जो तरले हर नाम सिमरत मिटे किल विख बुझी तप्त अकानिया गह पूजा लीने दया कीने अपने कर मानिया ले अंक लाए हार मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जय श्री शांत महला पंजवां पधानु संसार गर्व अटिया करते पाप अनेक माया रंग रटिया लोभ मोहे अवमान बूढ़े मरण चीत न आवे पुत्र मित्र व्यवहार बिनता एह करत ब्याहवे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत करम ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उदम करे अनेक हर नाम न गावेही परमे जौन असंख मर जन्मे आवेही पशु पंखी सैल तरवर गंत कछु न आवे बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे रतन जन्म रहंत जुए प्रभु आप ना पावेही बिनवंत नानक परमे।

भजन इसे छोड़ माया चालिया कहा न माने सिर खाक शाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूर्ण नै निमुख मन में बूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सवार ना झूठिया चन कमल सरनाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कछ न बिचारिया गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया जैत श्री महला पंजवां बार सलोका नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेसर है सिमरंत संत सर्वत्र रमनंग नानक अगनासन जगदीश रै पेखन सम सनावनो मन में दृढ़िये साच पूर रहो सर्वत्र में नानक हर रंग राच पौड़ी हर एक निरंजन गाये सब अंतर सोई कान कारण समराथ प्राव जो करे सो होई खिन में थाप अथाप दा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पताल दीप रविया सब लोई जिस आप जाए सो बुझसी निर्मल जन सोई सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ स्थापनंग सास सास समरंत नानक महा अगन ना बनास नंग मुख तले पैर उपरे बसंदड़ो कहथड़े थाहे नानक सोतने क्यों बसारियो उदरह जिस दैनाए पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मजार उर्द मुख कुचील विकल नरक कोर गवार हर सिमरत तू ना जलहें मन तन उर तार बिखम थानो जिन

केत कर अनर्थ दर्व संचया सो कार्य केत जैसा बीजे सोलने कर्म ए हो खेत अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक कोट दान इश नानक अनक सोधन पवित्र तह उचरंत नानक हर हर सना सर्व पाप विमुचते ईतनक तोमू कणा पूरी दतीम पाहे मन बसंदड़ो सच सौ नानक हबे दुखड़े ओलाहे पौड़ी कोट अगा सब नास हो।

सुपने सेती चित मूर्ख लाया, विसरे राज रस भोग जागत पखलाया, आर जा गई बिहाए धंधे ताया, पूरन पहे ना काम मोहया माया, क्या बेचारा जंत जा आप पुलाया। श्लोक बसंत स्वर्ग लोके जितवे पृथ्वी नव खंडने, बिसरंत हर गोपाले नानक ते प्राणी उद्यान परमणे, कौतक कोड तमाचिया चित न आव सनाओ, नानक कोड़ी नरक बराबरे ओजड़ सोई थाओ। पाउड़ी महाप्यान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी पेक सच कर जानिया, काम क्रोध अहंकार फिरे देवानिया, सिर लगा जम डंड ता पछतानिया, बिन पूरे गुरदेव फिरे शैतानिया। श्लोक राज कपटक रूप कपटंग, तन कपटंग कुल गर्भ तह, संचंत विख्या शलंग छिद्रम, नानक बिन हर संग ना चालते, पखंदड़ो की भुल तुम्मा दिसम सोना, अड ना लंदड़ो मोना, नानक साथ ना जुली माया। पाड़ी चल दिया नाल ना चलै सो।

प्रभु छोड़ अन लागै नरक समझिया हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजिया श्लोक नच नच राज सुख मिसंट नच भोग रस मिसंट नच मिसंट सुख माया मिसंट साध संग हर नानक दास मिसंट प्रभ दर्शन लकड़ा सुनेहो मन मजाहू रत्या विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सोतनी पौड़ी हर बिन कछु ना लागी भगतन को मिठा आन स्वाद सब फिक्या हर निर्णौ डिठा अज्ञान परम दुख कटिया गुर पे वसीठा चरण कमल मन बेदया जो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिनसे सब झूठा श्लोक तेकत जलंग नै जीव मीनंग नै त्याग चात्रिक मेघ मंडल बान बेदंच कुरंक नादंग अलबंधन कुसम वासन चरण कमल रचंत संत नानक आ न रुचते मुख दिखाऊन पलक छड आन देउ चित जीवन जीवन संगम तिस्तनी नान तनी हर नानक संता मित पौड़ी ज्यो मछली बिन पाणी है क्यों जीवन पावै बूंद विहुना चा त्रिको क्यों कर तृपतावै नाद कुरंकै बेदया सन मुख उठतावै पवर लोभी कुसम बास का मिल आप बंधावै त्यो संत जिना हर प्रीत है देख दर्स अगावै सलोक चितवंत चरण कमलंग सास सास आराधना न बिसरंत नाम अचुत नानक आस पूर्ण परमेसर सीतड़ा मन मंजाए पलक न थीवै बाहरा नानक आसड़ी निभाए सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गुसाई पूरिया मिल गोपाल गोपिंद न कबू चूरिया देव दर्स मन चाव लै जाए विसूरिया होए पवित्र शरीर चन्ना तोरिया पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरिया श्लोक रसना उचरंत नामंग श्रवणंग सुनंत शब्द अमृता नानक तिन सद बल हारनंग जिना ध्यान पार ब्रह्मण हब कुड़ावे कम एक साई बाहरे नानक सही तन जिना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निभावै प्रभ मथा हर जस लिखै बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रभ सतपथा संता संग उदार सगला दुख लथा श्लोक भावी भावी और दोत करनंग हर रमणंग संजोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटंग सफल नानक सो मूर्त की मनसका पाए सुख मती हो बाहरे नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंदड़ो मा फिरी पौड़ी सावे ला को कौन है जित प्रभ को पाए सो मूर्त भला संजोग है जित मिला गुसाई आठ पैर हर त्याय कै मन इच पुजाई वड़ा भाग सत्संग होए निव लागा पाए मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई श्लोक पतत पुनीत गोबिंदा सर्व दोख निवारण शरण सूर भगवान जमपत नानक हर हर हरे छड़ियो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्राप विखंदया पौड़ी मेल ले हो दयाल टै पे द्वारिया रख लेवो दीन दयाल प्रमत पहारिया भगत वछल तेरा बिरद है परद हर पतत उधारिया तुझबिन नाही कोई बिनो मोह सारिया कर गै लिहो दयाल सागर संसारिया श्लोक संत उदरण दयालंग आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेसर है चंदन चंदन सरद रुत मूल ना मिट्टी काम सीतल थीवै नानका चपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निर्भो पे मन तोट न आवै मूल संचया नाम धन संत जना स्यो संग पाइया वड्डै पुन आठ पैर हर त्याय हर जस नित सुन सलोक दया करनंग दुख हरनंग उचरंग नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिपत न माया पाए बुलंदड़ी बुझगी रखंदड़ो
प्रभ आप जिन उपाय मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ भय दयालता जा प्रभ भय दयालन व्यापै माया कोट अगा गे नास हर एक त्याया निर्मल पे शरीर जन तुरी नाया मन तन पे संतोख पूर्ण प्रभ पाया तरे कुटंब संग लोक कुल सभाया सलोक गुर गोबिंद गोपाल गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण गुर दयाल समर्थ गुर गुर नानक पतित उदारण पौजल बिखम अस गाहो गुर बोहित है तरिया तारियम नानक पूर क्रम सतगुर चन्नी लग्या पौड़ी धन धन गुरदेव जिस संग हर जपे कर गुर कृपाल जब पे ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच्च थपे काटे सिलक दुख माया कर लीने आप दसे गुण गाय बेअंत रसना हर जसे श्लोक दृष्टिंग एको सुनियंत दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नर हरै नाम दान जा चंद नानक दयाल पुरख कृपा करे हिक सेवी हिक समला हर एक स्पै अरदास नाम वखर तन संचया नानक सची रास पाड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूरन एक रेहो सब किश आपे आप दूजा कहा के हो आप करो प्रभ दान आपे आप लेओ आवन जाना हुक्म सब नैचल तुद दे तुद थे हो नानक मंगे दान कर कृपा नाम दे हो जैत श्री बाणी भगता की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाथ कछु ना जानो मन माया कै हाथ पिकानो रहाओ तुम कहियत हो जगत गुरस्वामी हम कहियत काल जग के कामी इन पंचन मेरो मन ना बिगारियो पल पल हर जी ते अंतर पारियो जत देखो तत दुख की राशि अजा न पताए निगम पे साखी गौतम नार उमापत स्वामी सीस तरन सहस पग गामी इन दूतन खल बद कर मारियो बडो निलाज अजू नहीं हारियो कह रविदास कहा कैसे की जाय बिन रघुनाथ शरण का की लीजै एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी साबन गुर प्रसाद राग टोडी महला चौथा कर पहला हर बिन रहना से कह मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बौर ना पव जल फेरा रहाओ मेरा हीरा लोच लगी प्रभ केरी हर नैनो हर प्रभ हेरा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया हर पादर हर प्रभ केरा हर रंगी हर नाम प्रभ पाया हर गोविंद हर प्रभ केरा हर हृदय मंतन मीठा लागा मुख मस्तक भाग चंगेरा लोभ विकार जिना मन लागा हर विसरिया पुरख चंगेरा ओए मनमुख मूड़ अज्ञानी कहिया तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ के राजन नानक नाम गुरु ते पाया तुर मस्तक भाग लखेरा टोटी महला पंजमा कर पहला तुपते एक ओंकार सतगुर प्रसाद संतन अवन का हूँ जानी बेपरवास दारंग हार कै जाको पाक स्वामी रहाओ ओ चमाना ठाकुर तेरो अवन का हूँ तानी ऐसो अमर मिल्यो भगतन को राच रहे रंग यानी लोग सोग दुख जरा मेरा हर जाने नहीं निकटानी निरपो होए रहे लिव एक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजमा हर बिसरत सदा खुआरी ताको तोखा कहा ब्या पै जाको ओट तुहारी रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बल ना सर्प जैसे अरजारी नाव खंडन को राज कमावे अंत चलैंगो हारी गुण निदान गुण तिन ही गाय जाको कृपा तारी सो सखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलहारी टोडी महला पंजमा का दूजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दै दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो तिन प्रभ आप बुलायो रहाओ हर कथा हर जा साध संगत स्यो एक मौत ना एहो मन लायो बिस बिगस्यो पेख रंग कुसंभ को पर ग्रह जोन जायो चरण कमल से पाओ न किनो न सत पुरख मनायो तावत को तावै बपाती जो तेली बरद प्रमायो नाम दान इशनान न कियो एक निमख ना कीरत गायो
ਨਾਨਾ ਝੂਠ ਲਾਏ ਮਨ ਤੋਖਿਓ ਨੈ ਬੁਝਿਆ ਅਪਣਾਇਓ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਕੀਏ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਤੇ ਆਇਓ ਪੰਚ ਦੂਤ ਰਚ ਸੰਗਤ ਗੋਸ਼ਟ ਮਤਵਾਰ ਮਦਮਾਇਓ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸੁਣ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਭਰਿਓ ਹਰ ਪਾਛੈ ਰਾਖ ਲਾਜ ਅਪਣਾਇਓ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਨਕ ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ ਅਨਕ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਹ ਕਰਤਾ ਜਿਉ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਡਾਇਆ ਰਹਾਉ ਤਾਏ ਤਾਏ ਕਿਰਪਨ ਸਿਮਰ ਕਿਨੋ ਇਕਤਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਅਪਰਨ ਸਵਾਰੀ ਸਿਜਾ ਕਾਮਨ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਓ ਆਪਣੇ ਪਰਤੇ ਪੇਖ ਭੇਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਸਮਝੂਰੀ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲੈ ਛਰਾਇਆ ਖੇਦ ਪਿਓ ਪੈ ਗਾਰੀ ਨਿਆਈ ਘਰ ਕੈ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਪਿਓ ਨਗਰੋ ਜਾਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਪਾਛੈ ਭਰਿਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਵਸੋ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨੀਤ ਦੈਸੀ ਬੁੱਧ ਕਰੋ ਪਰਗਾਸਾ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹਾਓ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਕੀ ਪਾਵੋ ਤੂਰਾ ਮਸਤਕ ਲੇਲੇ ਲਾਵੋ ਮਾਂ ਪਤਤੇ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਆਗਿਆ ਤੁਮਰੀ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੋ ਕਿਉ ਤੁਹਾਰੋ ਪਾਵੋ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਤੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆ ਨਕਤ ਹੂੰ ਤਾਵੋ ਸਦੀ ਨਿਕਟ ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮੀ ਸਗਲ ਰੇਨ ਹੋਏ ਰਹੀਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਲਹੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮ ਛੋਰੇ ਤੁਮਰੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਹਮਰੋ ਮੀਰਾ ਨਾਨਕ ਬਾਲਕ ਤੁਮ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮੁਖ ਨਾਮ ਤਹਾਰੋ ਤੁਮਾਰੋ ਖੀਰਾ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦੂਜਾ ਦੁਪ ਦੇ ਇਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੈ ਮਿਲੈ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ ਰਹਾਓ ਰਾਜ ਮਾਲ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਰਸ ਸਗਲ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਮ ਤਾਏ ਤਾਏ ਬਾ ਬਿਦ ਕੋ ਤਾਵੈ ਸਗਲਿ ਰਾਰਥ ਕਾਮ ਬਿਨ ਗੋਵਿੰਦ ਅਵਰ ਜੇ ਚਾਹੋ ਦੀਸੈ ਸਗਲ ਬਾਤ ਹੈ ਖਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇਨ ਮੰਗੋ ਮੇਰੋ ਮਨ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਮਨੈ ਸਾਧਾਰੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਬਰਤਨ ਏ ਹਮਾਰੈ ਰਹਾਓ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਪਤ ਹੈ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਖਾਈ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਹਰ ਨਾਮ ਮੋਕੋ ਨਿਸਤਾਰੈ ਬਿਖੈ ਵਿਲਾਸ ਕੈ ਯਤ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਚਰਤ ਨ ਕਛੂ ਸੰਘਾਰੈ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਨਾਮ ਨਾਨਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਭੰਡਾਰੈ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੀਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਿੱਠੀ ਰੋਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿਰੋ ਰਹਿ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਲੋਗ ਰਹਾਓ ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਨੈ ਚਰਾਵੋ ਭੋਗ ਛੋਟ ਆਪਤ ਬਾਦ ਅੰਕਾਰਾ ਮਨ ਸੋਈ ਜੋ ਹੋਗ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਸੋਈ ਹੈ ਲਾਗਾ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖੋਗ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕਰਨਾ ਜੋਗ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ ਰਹਾਓ ਅਵਰ ਨ ਸੁਜੈ ਦੂਜੀ ਠਾਰ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਤਾ ਦੁਆਰੀ ਲਿਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖੈ ਛੁਟੈ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਓ ਉਭਾਰੀ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਭਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਉਭਾਰੀ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਨ ਰਹਾਓ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੈ ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਤੇ ਛੁਟੈ ਪਵਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ ਅਭਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਿੰਦ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਟਿਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਰਾਪੇ ਦਿਆਲਾ ਸਿਵਕੈ ਬਾਣ ਸਿਰ ਕਾਟਿਓ ਰਹਾਓ ਕਾਲ ਜਾਲ ਜਮ ਜੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਸੱਚ ਕਾ ਪੰਥਾ ਠਾਟਿਓ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਕਿਛ ਨਿਖਟਤ ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਖਾਟਿਓ ਪਸਮਾ ਪੋਤ ਹੋਆ ਖਿਨ ਪੀਤਰ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਦੇਖੈ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ

संत प्रसाद पैद नारायण करण कारण प्रभ एक बाल बुद्ध पूरन सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजमा हर हर नाम सदा सद जाप तार नगरो पार ब्रह्म स्वामी वस्ती किन्नी आप रहाओ जिसके से फिर तिसही संभाले बिन से सोग संताप हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप जी जंत हो इन मेहरबाना दया तारी हर नाथ नानक शरण परे दुख पंजन जाका बड प्रताप टोडी महला पंजमा स्वामी शरण परो दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उदारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे साध संग परम गत पाइय माया रच बंध हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजमा कर तीजा जप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद हा हा लपट्यो रे मूड़े कछु ना थोरी तेरो नाही सो जानी मोरी रहाओ अपन राम न चिन्हो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन न बसायो छोड़ जाए वाहु चित लायो सो संचयो जित भूख तसायो अमृत नाम तुसा नहीं पायो काम क्रोध मोह कूप परया गुर प्रसाद नानक को तरिया टोडी महला पंजमा हमारे एक हरि हरि आन अवर सिन्यान ना करी रहाओ वड़ा पा गुर अपना पायो गुर मोको हर नाम दृढ़ायो हर हर जाप ताप हर हर जाप ताप व्रत नेमा हर हर त्याय कुसल सब खेमा आचार व्यवहार जात हर गुनिया महानंद कीर्तन हर सुनिया रहाओ महानंद कीर्तन हर सुनिया कौ नानक जिन ठाकुर पाया सब किस तिसके ग्रह में आया टोडी महला पंजमा घर चौथा दुप दे ओंकार सतगुर प्रसाद रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै गाली हर नीहो ना होए रहाओ हाँ ढूंढे दी दर्शन कारण बिथी बिथी पेखा गुरमिल परम गवाया है यो बिद माई यो बिद पाई मैं साधु कन्नो लेख लिख्यो तुर माथा ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजमा गर्भ गलड़ो मूड़ो हियो रे हियो मैं राज री मायो दीहर न्याय मोटा पाक्यो रे रहाओ कन्नो कन्नो कन्नो सद लोड़ै बिन लैने कट है पायो रे महाराज को गाथ वाहू स्यो लुबड़ो न भागड़ो पाए संजायो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले प्राचित मिट्यो रे जाको लैनो महाराज की गाठड़ियो जन नानक गरबास ना पड़ियो रे टोडी महला पंजमा कर पंजमा दुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दोख अर अंग रोग ए तांते सगला सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर छोर बिख्याते गुर को शब्द मेरा ही रह दीन रूप अनुरूप मेरो कछ ना विचार्यो प्रेम के हो मोए हर रंग पीन पेख्यो लालन पाट बीच खोए अंध चिता हर खै पतीन तिस ही को ग्रह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को तीन टोडी महला पंजमा माई मेरे मन की प्रीत एही करम तरम जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाओ प्राण आधार जीवन तन मेरा प्राण आधार जीवन तन मोरा देखन को दर्शन प्रभ नीत बाट काट तो सा संग मोरा मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद पे मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आज गाद भगतन के मीत टोडी महला पंजमा प्रभ जी मिल मेरा प्राण बिसर नाही निमक हियरे ते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोवा परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरा अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे समृत कान तेरी शरण जियन के दाते सदा सदा नानक गुरबान टोडी महला पंजमा प्रभ तेरे पग की तूर दीन दयाल प्रीतम मन मोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ
दया दिस राव रहे आज जिस तुमरा।

0: अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गावै करते, से जन कबो न मरते चूर। धंध बंध बिन से माया के, साधु संगत मिटे बसूर। सुख संपत भोग इस जी के, बिन हर नानक जाने कूर। टोडी महला पंजमा, माई मेरे मन की प्यास, एकिन रैनस को बिन प्रीतम, दर्शन देखन को तारी। मन आस रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते, मन तन ते सब किल विखनास। पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते, अविनाशी बिमल जाको जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ, कर कृपा पेटे गुणदास। शांत सहज सुख मन उपजो, कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजमा, हर हर पतत पावन, जी प्राण मान सुखदाता, अंतर जामी मन को पावन रहाओ। सुंदर सुगड़ चतर सब बेता, रिद्ध दास निवास, भगतन गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी, कर्म भूम बीजन सो खावन। बिस्मन बिस्म पे बिस्मादा, आन बियो दूसर लावन। रसना सिमर सिमर जस जीवा, नानक दास दा बल जावन। टोटी महला पंजवा, माई माया छल, तिरन की अगन मेघ की छाया। गोविंद भजन बिन हड़का जाल रहाओ, छोड़ सियानप बहु चतराई। दोए घर जोड़ साध मग चल, सिमर स्वामी अंतर जामी, मानक देका यो उत्तम फल। वेद विख्यान करत साधु, जन पाग हीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राचे जन नानक, हर सिमरन दाहन पे मल। टोडी महला पंजमा, माई चरण गुर मिठे, वड़ा भाग देवै परमेसर। कोट फला दर्शन गुण गुर डिठे रहाओ, गुण गावत अचत अविनाशी। काम क्रोध बिन से मद डिठे, अस्थिर पे साच रंग राते। जन्म मरण बाहर नहीं पीठे, बिनार भजन रंग रस जेते। संत दयाल जाने सब झूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे। टोडी महला पंजमा, साध संग हर नाम चितारा। सहज आनंद होवै दिन राती, अंकुर पलो हमारा रहाओ। गुर पूरा पेट्यो वडभागी, जाको अंत न पारा वारा। कर गै काड लियो जन अपना, बिक सागर संसारा। जन्म मरण काटे गुर बचनी, बौण न संकट द्वारा। नानक शरण कही स्वामी की, पुनः पुनः नमस्कारा। टोडी महला पंजमा, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भगवै। हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाओ, कोट जन्म के किल बिखनासै। सिमरत पावन तन मन सुख, देख सुख पूरण पे आसा। दर्शन पेटत उतरी भुख, चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध। काम तेन पार जात हर हर रुख, नानक शरण गही सुख सागर। जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। टोडी महला पंजमा, हर हर चरण हृदय उर तारे। सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तत् बिचारे। गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे। जो जान पाए ब्रह्म अपने किन्ने, तिनका बौर कछ ना बिचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर हर हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कहो कहाँ अपनी अदमाई, और जो कनक कामनी के, रास ने कीरत प्रभ गाई रहाओ। जग झूठे को साच जान कै, ता स्यो रुच उपजाई। दीन बन सिमरियो ने कब होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में, निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाए अंत गत, बिन हर की शरणाई। टोडी बाणी भगता की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर, जल की माछली चरै खजूर। काई रे बकबाद लायो, जिन हर पयो तिने छपायो रहो। पंडित होय कै बेद बखाना, मूर्ख नाम दियो राम मैं जाना। कौन को कलंक रहो, राम नाम लेत ही। पतत पवन पे राम कहत ही रहाओ, राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई, एकादशी बत्र रहे काहे को तीर्थ जाई, पनत नाम द्यो सुकृत सुमत पे गुरमत राम कह को कोना बह खंड लाए, तीन छंदे खेल अच्छा रहाओ, कुंभार के कर हांडी अच्छा राजा के कर सांडी गो, बामन के कर रांडी अच्छा रांडी साडी हांडी गो, बाणिये के कर हींग अच्छा बेसर माथे सींग को, देवल मध्य लीग अच्छा लीग सीग हीग को, तेली कह कर तेल अच्छा जंगल मध्य बेल को, माली के कर केल अच्छा केल बेल तेल गो, संता मध्य गोविंद अच्छा गोगल मध्य श्याम गो, नामे मुद्दे राम अच्छा राम श्याम गोविंद गो, राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला, दुप दे एकोंकार सतगुर प्रसाद, सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे, पज गुरमत हर राम राम रहाओ, नाना ख्यान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम, संकर करोड़ तैतीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम, सुर नर गुण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम, नानक कृपा करी हर जिन को ते संत पले हर राम, बैराड़ी महला चौथा, मन मिल संत जिना जस गायो, हर हर रतन रतन हर निको गुर सतगुर दान दिवायो रहाओ, तिस जन को मानता सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मिलायो, खिन कुंचेत कृपा करी जगदीसर तब हर हर जस त्यायो, जन नानक को हर पेटे स्वामी दुख हमें रोग गवायो, बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे, रहाओ जो किच करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे, हर आपे पंच तत्व विस्थारा विच तातु
1: आप पावे, जन नानक सतगुर आपे मेले हर आपे चगर चकावे, बराड़ी महला चौथा, जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कटंतर के पाप सब खोबे, हर पव जल पार उतारा रहाओ, काया नगर वस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्भैर निरंकारा, हर निकट वस्त कुछ नदर न आवे, हर लादा गुर विचारा, हर आपे सास राफ रतन हीरा, हर आप की आप सारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम बिहाजे, सो सो सच्चा वणचारा, बराड़ी महला चौथा, जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता, जाका अंत न पारा वारा रहाओ, अगन कुंट में उर्दलिब लागा, हर राखे उदर मजारा, सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंत शिडावन हारा, जाके हृदय बसिया मेरा, हर हर तिस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाइये हर जप नानक नाम अधारा, बराड़ी महला चौथा, जप मन हर हर नाम नित त्याय, जो इच्छे सोई फल पावे, फिर दुख न लागे आए रहो, सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर स्यों प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्री सब झूठी, इखिन में विसर सब जाए, तू बेअंत सर्व काल पूरा, किच कीमत कई न जाए, नानक शरण तुम्हारी, हर जियो पावे तिवे छड़ाए, राग बराड़ी महला पंजमा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संत जना मिल हर जिस गायो, कोट जन्म के दुख गवाए रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दवायो, सर्व सुकर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई, राग तलंग महला पहला कर पहला, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद, जाक अरज गुफ्तम पेस तो दर गोस कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बै ऐब परवरदगार दुनिया मकामे फानी तहकीक दिलदानी मामसर मोज रायल गिरफ्तार दिल हेच न दानी राव जन पिसर पद्धर बरहदरा कस नेस दस्तगीर आखिर बिहत्तम कस नादारद चूत शब्द तकबीर

किमती माया माई समाणी इन्नी बाती सो पाइये नाही पै कामणियाणी जाय पिछो सुहागणी पावे किन्नी बाती सो पाइये जो कुछ करे सो पला कर मानिए हिकमत हुकम चिकाइये जाके प्रेम पदार्थ पाइये तो चरनी चित लाइये सो कहे सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा परमल लाइये एव कहे सुहागणी पहने इन्नी बाती सो पाइये आप गवाइये ता सो पाइये और कैसी चितराई सो नजर कर दे के सो दिन लेके कामण नौनित पाई अपने कंत प्यारी सास हागण नानक सास वराई ऐसी रंग रहती सहज की माती एनस पाए समाणी सुंदर साई स्वरूप बिचखन कहिए साई सियाणी तलंग महला पहला जैसी में आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान विलालो पाप की जंजले काबल ताया जोरी मंगे दान बिलालो सरम तरम दो छप खलोए कूड़ फिरे पर दान बिलालो काजिया बामणा की गल थकी अगद पड़े शैतान बिलालो मुसलमानिया पड़े कतेबा कष्ट में करे खुदाए बिलालो जात स्नाती होर दिवानिया ए भी लेखे लाए बिलालो खून के सोले गावे नानक रत का कुंग पाए बिलालो साहिब के गुण नानक गावे मासुरी विच आख मसोला जिन पाई रंगरवाई बैठा वेख वख केला सच्चा सो साहिब सच तवाव सचड़ा न्यो क्रेक मसोला काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान समासली बोला आवन अठतरे जान स्थान वे होर भी उठसी मर्द कचेला सच की बाणी नानक आखे सच सुनाई सच की बेला तलंग महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब आए हुकम खुसमाए हुकम सब वर्तनी सच साहिब साचा खेल सब हरतनी सलाई सच ऊपर हरतनी जिस नाही कोई श्री किस लेखे होगणी राव पौन पानी धरती का स्कर मंदर हर बणी विचवरते नानक आप झूठ क्या को क्या गणी तलंग महला चौथा नित नैफल करम वफा कमाए वफा वे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जीतिया ऐसा बाजी संसार न चेते हर नामा खिन मैं बिन से सब झूठ मेरे मन त्याय रामा राव सब इला चित न आवे जित आये कंट काल ग्रसे तिस नानक लय छाये जिस कृपा कर हर हृदय बसे तलंग महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद खाक नूर कर दंग आलम दुनिया असम जमीन दर गथ दर खत आब पैदाइश खुदाए बंदे चश्म दीन फनाए दुनिया मुरदार खुरदनी गाफल हवाए राव गैवान हवान हराम कुस्तनी मुरदार बोखराए दिल कब्ज कब्जा कादरो दोजिक सजाए बली नियामत विरतरा दरबार मिलखनाए जब जराल बसनी तब ची कारे बदाए वाल मलूम कर दंग पाक अला बबू नान कर दास पेस दरवेश बंदा तलंग कर दूजा महला पंजवा तुदबिन दूजा नाही गोए तू करतार करे सोए तेरा जोर तेरी मन टेक सदा सदा जप नानक एक सब ऊपर पार ब्रह्म दतार तेरी टेक तेरा आधार हव है भी तू है तू हो बनहारा अगम गाद ऊच पार जो तुद सेवे तिन पौ दुख नाए गुर प्रसाद नानक गुण गाए जो दिसे सो तेरा रूप गुण दान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक करम प्राप्त होए जिन जपिया तिसको बलिहार तिसके संग तरे संसार को नानक प्रभलोचा पूर संत जना की बाचो तूर तलंग महला पंजवा कर तीजा मेहरवान साहेब मेहरवान साहिब मेरा मेहरवान जी सगल को दे दान रहाओ तू काहे डोले प्राणिया तू दराके सिर जनहार जिन पदाइस तू किया सोई दे आधार जिन पाई मेदनी सोई करदा सार कट कट मालक दिलां का सच्चा परवरदगार कुदरत की मन जानिए वड्डा बेपरवा कर बंदे तू बंदगी जिचर कट में सा तू समर्थ अकथ गोचर ज्यो पिंड तेरी रास रैम तेरी सुख पाया सदनान की अरदास तलंग महला पंजमा कर तीजा
करते कुदरती मुस्ताक दीन दुनिया एक तू ही सब खलक ही ते पाक रहाओ खिनमी थाप ओ थाप दा आचार्य तेरे रूप कौन जाने चल तेरे द्यारे मैं दीप खुद खसम खलक जहान अल्लाह मेहरबान खदाए दिन सरैन जे तुद अरादे सो क्यों दो जग जाए अजराइल चार बंदे जिस तेरा आधार गुना उसके गप सगल आपू तेरे जन देखे दीदार दुनिया चीज फिलहाल सकले सच सुख तेरा नाओ गुरमिल नानक बूजिया सदा एक सगाओ तलंग महला पंजवा मीरा दाना दिल सोच मोहब्बते मन तन वसे सच साबंदी मोच रहाओ दीदने दीदार साहिब कुछ नाही इसका मोल पाक परवरदगार तू खुद खसम बड़ा तोल दस्तगीर दे दिलावर तू ही एक करतार कुदरत करन खालक नानक तेरी टेक तलंग महला पहला कर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद जिनकिया तिन देखिया कह क्या कहिए रे पाई आपे जने कार करे आपे जाने करे आप जिन बाड़ी है लाई रायसा प्यारे का रायसा जिस सदा सुख होई रहाओ जिन रंगकंत नराव्या सा पुछो रे तानी हाथ पछोड़े सिर तने जब रैन बिहानी।

सतगुर प्रसाद उज्जल कहे चिलकना कोटम कालड़ी मास तोतियां झूठ न उतरे जे सो तो वातिस सज्जन सही नाल में चलदिया नाल चलन जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दसन रहो कोठे मंडप माड़िया पासो चित भी आहा नठियां कम नावनी बिचो सखनी आहा बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मजवसन कुटकुट जिया खाबने बग्गे ना कहन सिमल रुख सीर में मैजन देख पलन से फल कम ना आवनी तै गुण में तनहन अंदले पार उठारिया डूगर बाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हो चढ़ा लंगा कित चाकरियां चंगियाईयां अभर सियान पित नानक नाम समाल तू बद्दा छुट्टा जित सोई महला पहला जप तप का बंद बेलड़ा जित लंगे बहेला ना सरवर ना उछले ऐसा पंत सेला तेरो इको नाम जीता रत्ता मेरा चोला सदरंग टोला राव सज्जन चले प्यारिया क्यों मेला हुई जे गुण होवे गठरिये मेलेगा सोई मिलिया होए न बिछड़े जे मिलिया होई आवा गौण वारिया है सच्चा सोई होमे मार नवारिया सीता है चोला गुर बचनी फल पाया सहके अमृत बोला नानक कहे सहेलियो सो खरा प्यारा हम सह केरियां दासियां सच्चा खसम मारा सुई महला पहला जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करे पुसाओ दुख वसार सी सहसा मूल न सर पर तासी तिना मिलिया गुराय जिनको लिखिया अमृत हर का नाव देवे दिखिया चले सतगुर पाए पवे न पीखिया जाको मेल हजूर दूजे निवे किस दर दरवाणी ने मूले पुछते स छूटे ताको बोल साहेब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मते कोई ताए सारे साजा ने सब सोए नाओ नानक बख्शी नदरी करम होए सुई महला पहला पांडा अच्छा सोए जो तिस

अच्छे का विचार आवरताई सी, मत को जाने जय गे पाई सी, जेहे कर्म कमाए ते हा हो सी, अमृत हर का नाव आवरताई सी, चलिया पत से जन्म सवार भाजा वसाई सी, मानस क्या विचारे तै लोक सुनाई सी, नानक आप निहाल सब कुल तारसी, सुई महला पहला जोगी होवे जोग बे, भोगी होवे खाए, तपिया होवे तत तप करे, तीरथ मल मल लाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को बहे अलाए रहो, जैसा बीजे सोलने जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ न होवी जे सुन निशाने जाए, तैसो जैसा काडिया जैसी कार कमाए, जो दम चितना भी सो दम विरता जाए, एतन वेची बेकरी जे को लहे बकाए, नानक कमना आवनी जितन नाही सच्चा नाओ, सुई महला पहला कर सतमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जोग न खिंता जोग न डंडे, जोग न पसम चढ़ाइए, जोग न मुंदी मूंड मडाइए, जोग न सिंगी बाइए, अंजन माए न रंजन रहिए, जोग जुगते बपाइए, गली जोग न होई एक दिस कर समसर जाने, जोगी के ये सोई रहो, जोग न बाहर मड़ी मसानी, जोग न ताड़ी लाइए, जोग न देस्त संतर पविये, जोग न तीर्थ नाइये, अंजन माए न रंजन रहिए, जोग जुगते बपाइए, सतगुर पेटे ता सहसा तुटे, तावत वर जरहाइए, निजर चरे सहज तन लागे, कर ही परचा पाइये, अंजन माए न रंजन रहिए, जोग जुगते बपाइए, नानक जीवतिया मरइये, ऐसा जो कमाइए, वाजे वाजो सिंगी बाजे, तो निरपौ पद पाइये, अंजन माए निरंजन रहिए, जोग जुग त्यों पाइये, सुई महला पहला, कौन तरा जी कवन तुला तेरे कवन सराब बलावा, कौन गुरी कह पै देख्या लेवा कह पै मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, तू जल थल मैयल पर पुलीना, तू आपे सर्व समाना राव, मन तरा जी चितुला तेरी सेव सराफ कमावा, कटी पीतल सौ तोली इन विद चित्र वावा, आपे कंडा तोल तेरा जी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बुझे आपे है वन जारा, अंदला नीच जात परदेसी कि नावे तिल जावे, तांकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मूड़ा पावे, राग सुई महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन राम नाम अराध्या गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा तन मन पूरिया सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावा राम नाम हर के, गुरु तुठे मन प्रबोधिया हर पिया रस गत के राव, सत संगत उत्तम सत गुर केरी गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मेलो सत संग हम तोबो पग जन के, राम नाम सब है राम नामा रस गुर मत रस रस के, हर अमृत हर हर जल पाया सब लाती तिस तिस के, हमरी जात पात गुर सतगुर हम बेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परियो गुर चेला गुर राखो लाजन के, सुई महला चौथा हर हर नाम पजियो परखो तुम सब बिनसे दालक दलगा, पौ जन्म मरना मिट्यो गुर शब्दी हर अस्तर सेव सुख समगा, मेरे मन पज राम नाम नित पिरगा, मैं मंतन अर्प तरियो गुर आगे सिर वेच लियो मुल मैं गा राव, नरपत राजे रंगरस माने बिन नामे पकड़ खड़े सब खलगा, तरम राय सिर डंड लगाना फिर पुछताने हथ हथ फलगा, हर राख राख जन किरमत मारे शरनागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत दे सुख पावे प्रभलोच पूर पूर जन तुमका, तुम समर्थ पुरख बड़े प्रभ स्वामी मोको की जे दान हर निमका, जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम बिटो सदकुम का, सुई महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठे रंग, गुरु तुठे हर रंग चाड़िया फिर बौर न हो वी पंग, मेरे मन हर नाम नाम करंग, गुरु तुठे हर पदेसिया हर पेटिया डाओ निसंग राव, मुंदी आनी मन मुखी फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चितन आयो मन दूजा पव सैलंग, हम मैल परे दो चारिया हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सरन वालिया सब लाथे किल विकपंग, हर दीना दीन दयाल प्रभ सत्संग मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मंतन रंग, सुई महला चौथा हर हर करे नित कपट कमावे हृदय शुद्ध न होई, आंदी करम करे बथेरे सुपने सुख न होई,
ज्ञानी गुरबिन भगत न होई, कोरे रंक दे न चढ़े जय लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मनमुख रोग न जाई, अंतर रोग महावाना दूजे पाए खवाई। बार पेख बहुत चतराई, मनुआ दे दिस्तावे, होमे व्यापाश होमे व्याप्या शब्द न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो बूजे, जो जन नाम त्याए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए समाए। सुई महला चौथा कर दूजा एक ओंकार, सत गुर प्रसाद गुरमत नगरी खोज खजाई, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई। तिसना अगन बुझी खिन अंतर, गुर मिलिये सब पुख गवाई राव, हर गुण गावा जीवा मेरे माई, सत गुर दयाल गुण नाम दड़ाई। हो हर पर प्यारा टूंड टराई, सत्संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक दुठा मिले हर पाई। सुई महला चौथा हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर हर नाम समाए, हर रंग राता मन रंग माने, सदानंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द समाने रहाओ। हर रंग को लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मन मुख मुक्त नर कोरा होए, जे सो लोचे रंग न होवे कोई, नदर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सुई महला चौथा जेवा हर रस रही गाए, गुरमुख पीवे सह जिसमाए, हर रस जन चाखो जे पाई, तौकत अंत साधल वाई राव। गुरमुख रस राखो रतार, हर रस राते रंग मुरार, मन मुख हर रस चाख्या न जाए, होमे करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे। सुई महला चौथा कर शीमा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद नीच जात हर जपतियां, उत्तम पदवी पाए। पूछो बिदर दासी सुते किसन उतरिया, कर जिस जाए, हर की कथ कथो सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब ले जाए राव। रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमखिक गाए, पतित जात उत्तम प्यावर, चार बरन पे पागल आए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोग शीपा कहे बलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े, हर नाम दे लिया मुख लाए। जितने भक्त हर सेवका मुखड़ सर तीरथ तिन तिलक डाए, जन नानक तिनको अन दिन परसे, जय कृपा करे हर राय। सुई महला चौथा तिनी अंतर हर अराध्या, जिन को तुर लिखिया लिखत लिलारा, तिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंकरे मेरा हर कर तारा। हर हर द्याय मन मेरे, मन त्याय हर जन्म जन्म के, सब दुख निवारण हारा राव। तुर भक्त जना को बख्शिया, हर अमृत भगत भंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तिस हलत पलत मोकारा। से भक्ता से सेवका जिन हर नाम प्यारा, तिनकी सेवा ते हर पाइये, सिर निंदक के पवेशारा। जिस कर विरती सोई जाने, जगत गुरु नानक पूछ करो विचारा। चौ पीढ़ी आद जगाद बखीली, किने न पायो हर सेवक पाए निस्तारा। सुई महला चौथा जिथे हर अराधिये, तिथे हर मित सहाय, गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिदलिया न जाई। हर तन संचिए पाई, जय हलत पलत हर होए सखाई रहाओ। सत संगति संग हर तन खटिए, होरते होरत पाए, हर तन किते ना पाई। हर रतने का व्यापारिया, हर रतन तन भाजे, कच्चे के व्यापारिया, बाख हर तन लिया न जाई। हर तन रतन जवहर माणक, हर तन्ने नाल अमृत वेले वते, हर भक्ति हर लिव लाई। हर तन अमृत वेले वते का बीजिया, भक्त काय खर्च रहे न खुटे नाही। हलत पलत हर तन्ने की, भक्ता को मिली वडाई। हर तन निरपौ सदा सदा स्थिर है साचा, यो हर तन अग्नि तस्कर पाणिये, जमदूते किसे का गवाया ना जाई। हर तन को चक्का ने नावी, जम जगाती दंड ना लगाई। साक्ती पाप करके विख्या, तन संचिया तिना एक विख नाल न जाई। हलते विच साकद हेले पै, हथो छुट गया अगे पलत, साकत हर दरगे टोई न पाई। इस हर तन का सोहर आप है संतो, जिसनु दे सो हर तन लद चलाई। इस हर तन्ने का तोड़ कदे नावी, जन नानक को गुरसो जी पाई। सुई महला चौथा जिसनु हर सो प्रसन्न होए, सो हर गुणा रवे सो पग सो परवान। तिसकी महिमा क्या वनिए, जिसके हृदय वस्या हर पुरख भगवान। गोविंद गुण गाइए ज्यों लाए, सतगुरु नाल ध्यान रहाओ।
सो सतगुर सा सेवा सतगुर की सफल है, जिसते पाइए परम निदान, जो दूजे पाए साकत कामना, अर्थ दुर्गंध सेव दे सो नैफल सब ज्ञान, जिसनु प्रतीत होवे तिसका गाविया थाय पावे, सो पावे दर गय मान, जो बिन प्रतीति कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे, उनका उतर जाएगा झूठ गमान, जेता जो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कहे जन नानक जेहा तू खराए, तेहा हो करी बख्यान, सोई महला चौथा कर सतमा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तेरे कवन कवन गुण कह कह गामा, तू साहिब गुणी नदाना, तुमरी महिमा वर्ण साको, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तरसोई, जो पावे तो राख मेरे साय, मैं तुझ बिन अवरना कोई रहाओ, मैं तान दवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुदा गेर दास, मैं होर थाओ नाही, जिस पै करो बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, बिचे धरती बिचे पानी, बिच कासट अगन त्रीजे, बकरी सिंह इकते थाए रखे, मन हर जप प्रभ परम पौ दूर कीजे, हर की बढ़ियाई देखो संतो, हर नमाणिया मान दवाए, जो धरती चरण तले दे ऊपर आवे, त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए, सुई महला चौथा तू करता सब कुछ आपे जाने, क्या तुद पै आख सुनाइए, बुरा पला तुद सब कुछ सूजे, जेहा को कर को करे तेहा को पाइये, मेरे साहिब तू अंतर की बिद जाने, बुरा पला तुद सब कुछ सूजे, तुद पावे तवे बलावे रहा, सब मोह माया शरीर हर की हर किया बिच देई, मानक भगत कराई, इकना सतगुर मेल सुख देवे, इक मन मुख तंद पटाई, सबको तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया ले, जे ही तू नदर करे तेहा को होवे, बिन नदर नदरी नाही को पेक, तेरी बढ़ियाई तू है जाने, सब तुदनु नित त्याए, जिसनु तुद पावे तिसनु तू मेले, जन नानक सो थाए पाए, सुई महला चौथा जिनके अंतर वसिया मेरा, हर हर तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पै जिन हर नाम त्याया, तिन पवित परम पद पाए, मेरे राम हर जन रोग पै, गुरबचनी जिन जपिया मेरा, हर हर तिनके हो मेरो गए रहा, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच होमी कार कमाई, जिन किए तिस न चेते बुपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई, होमे रोग सब जगत व्यापिया, तिनको जन्म मरण दुख पारी, गुर प्रसादी को बिरला छूटते, तिस जन को हो बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने, ताका रूप पारो, नानक आपे वेख हर बिकसे, गुरमुख ब्रह्म विचारो, सुई महला चौथा, कीता करना सर्वर जाई, किछ कीचे जे कर सकिए, अपना कीता कछु न होवे, ज्यो हर पावे त्यों रखिए, मेरे हर जियो सबको तेरे बस, असां जोर नाही जे कुछ कर हम साके, जो पावे तिमे बख्श रहा, सब जियो पिंड दिया तुद आपे, तुद आपे कारे लाया, जेहा तू हुकम करे ते हो को करम कमावे, जेहा तुद तुर लिख पाया, पांच तत कर तुद श्रेष्ठ सब साजी, कोई शेहा करो जे कुछ कीता होवे, इकना सतगुर मेल तो बुझावे, इक मन मुख करे से रोवे, हर की बढ़ियाई हो आख न सका, हो मूर्ख मुग्द निचान, जन नान को हर बख्श लै मेरी सिरवामी, हर शरणागत पिया अजान, राग सोई महला पंजमा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बाजी गर जस बाजी पाई, नाना रूप एक दिखलाई, सांग उतार थम्यो पर सारा, तब एको एक ओंकारा, कवन रूप दृष्ट बनसायो, कते गायो ओ कते आयो रहाओ, जलते उठे अनेक तिरंगा, कनिक पूखन की ने बौरंगा, बीज बीज देख्यो बौ प्रकारा, फल पाते कंकारा, सहस कटा में एक आकाश, कट फूटे ते ओई परगास, परम लोभ मोह माया विकार, परम छूटे ते अंकार, ओ बनासी बिन सतनाई, ना को आवे ना को जाई, गुरपूरे हो मे मल तोई, कौ नानक मेरी परम गतोई, सुई महला पंजमा, कीता लोड़े सो प्रभ सोए, कीता लोड़े सो प्रभ होए, तुझ बिन दूजा ना ही कोए, जो जन सेवे तिस पूरन काज, दास अपने की राखो लाज,
तेरी शरण पूरन दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला राव। जल थल मैयरिया प्रभु, निकट वसे नाही प्रभु दूर। लोक पत्यारे कछु न पाइये, साच लगे ता हो में जाइये। जिसनु लाए लै सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम त्याए। दो कर जोड़ करोड़ दास, तुद पावे ता आने रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा त्याए। सुई महला पंजमा, तन सुहागन जो प्रभु पछाने। माने हुकम तजे भवाने, प्रियो सो राती रलिया माने। सुन सखिए प्रभु मिलन सानी, मन तन अर्पता तज लाज लुकानी। रहो सखी सहेली को समझाए, सोई कमावे जो प्रभु पावे। सास सुहागन अंक समावे, गर्भ गहली महल न पावे। फिर पछतावे जब रैन बिहानी, करमहीन मन मुख दुख पावे। बिनो करी जे जाना दूर, प्रभु बनासी रिया प्रभुर। जन नानक गावे देख दूर, सुई महला पंजमा। ग्रह बस गुर की ना हो कर की नार, दस्तासी कर दीनी पदार। सगल समग्री में कर की जोड़ी, आस प्यासी फिर क्यों लोड़ी। कवन कहाँ गुण कंत प्यारे, सुगढ़ स्वरूप दयाल मरारे। राव सत शिंगार पो बंजन पाया, अमृत नाम तबोल मुख खाया। कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जय फिर करावे। गुण कावन कर कंत रजाया, बस कर लीना गुर परम चकाया। सब ते ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागन सब कामन त्यागी प्रो प्रीतम मेरा। परप्रिया सूर ज्योत जियारा, सेज विशाई सरद पारा। नव रंग लाल सेज रे रावण आया, जन नानक पिर तन लिख सुख मिल सुख पाया। सुई महला पंज क्यों हो मिलन प्रवताई, खोज द्रज्यो देख्यो प्रभ जाई। सुनत सदेसरो ग्रह सेज विशाई, परम परम आयो तो नदर न पाई। किन बिद हीरो तिरे न मानो, मिल साजन हो तुझ करबान। एका सेज विशी तन कंता, तन सूती पिर सद जगंता। प्यो मधरो तन मतवंता, तन जागे जय पिर बलंता। पई नरासी बौ दिन लागे, देश संतर में सगले जागे। खिन रह न पावो बिन पग पागे, हो कृपाल प्र मिल पागे। प्यो कृपाल सत्संग मिलाया, बूजी तप्त कर ही पिर आया। सगल शिंगार हुन मुझे सुहाया, कौन आन गुर परम चकाया। जय देखा तय पिर है पाई, खोलियो कपाड़ता मन ठहराई। रहो दूजा सुई महला पंजमा, क्या गुण तेरे सार संभाली। मैं निर्गुण के द तारे, वह खरीद क्या करे चितराई। यो जो पिंड सब थारे, लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन। तेरे दर्शन को हम बारे, रहो प्रभु दाता मोदीन पकारी। तुम सदा सदा पकारे, जो कुछ नाही मैं जेते हो। मेरे ठाकर अग पारे, क्या सेव कमावो क्या रजावो। इद पिद कित पावो दर सारे, मत नहीं पाइये अंत न लइये। मंत्र से चरनारे, पावन दान डी ठोए मांगो। मुख लागे संत रह नारे, जन नानको गुर कृपा तारी। प्रभा दे निस्तारे, सुई महला पंजमा कर तीजा। इक ओंकार सतगुर प्रसाद, सेवा थोरी मांगन बहुता। मैल न पावे कह तो पौता, जो प्रमाने की तिनकी रीसा। मूड़े मूर्ख की हर ठीसा। रहाओ

सिमर सिमर ता हो को जीवा, चरण कमल तेरे तो पीवा। जो हर मेरा अंतर जामी, भक्त जना के संग स्वामी रहा। सुन सुन अमृत नाम त्यावा, आठ पैर तेरे गुण गावा। पेक पेक लीला मन अनंदा, गुण पार परमानंदा। जाके सिमन कुछ पवन अभ्यापे, सदा सदा ना निखर जापे। सोई महला पंजवा, गुर के बचन दे ध्यान तारी। रसना जाप जपो वनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी। चरण कमल मन प्राण अधारी, रहाओ साध संग जन्म मरण वारी। अमृत कथा सुन करन अधारी, काम क्रोध लो मोत जारी। दृ नाम दान स्नान सोचारी, कौन नानके तत् विचारी। राम नाम जप पारवधारी, सुई महला पंजमा। लोभ मोह मगन अपराधी, करन हार की सेव न सादी। पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे, राख लियो मोह निर्गुणियारे। रहाओ तू दाता प्रवंतर जामी, काची दे मान कब मानी। स्वाद बादी रख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया। दुख पंजन जग जीवन हर राया, सगल त्याग नानक शरण आया। सोई महला पंजमा, पेखत चाकत कहियत अंधा। सुनियत सुनिए नाही, निकट वस्त को जाने दूर। पापी पाप कमाई, जो कुछ कर जित छुटे प्राणी। हर हर नाम जप अमृत बाणी, राव कोर मैल सदा रंग रंत रंग राता। संग तुम्हारे कुछ न जाता, रख पुचार माटी का पांडा। अत कुचीर मिले जम डांडा, काम क्रोध लो मोह बादा। महांगर्त मैंने घर चाता, नानकी अरदास सुनीजे। डूबत पान प्रभ मेरे लीजे, सुई महला पंजमा। जीवत मरे बूझे प्रभ सोए, जिस तिस जन कर्म प्राप्त होए। सुन साजनियो दुत्तर तरिया, मिल साधु हर नाम उचरिया। रहो एका बिन दूजा नहीं जाने, कट कट अंतर ब्रह्म प्रशाने। जो कुछ करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने। कौ नानक तिस जन बलिहारी, जाके हृदय वसे मरारी। सुई महला पंजमा, गुर परमेश्वर करने हार। सगल श्रेष्ठ को दे आधार, गुर के चरण कमल मन त्याय। दुख दर्द स्तन ते जाय, रहाओ पर जल डूब सत गुर का डे। जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात। सुख सहज मनावे शांत, सत गुर की रैन बड़ भागी पावे। नानक गुर को सद बल जावे, सुई महला पंजमा। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस गाइए। सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सकल कटाका अंतर जामी। रहाओ

सुख सहज आनंद विश्राम राव पार ब्रह्म जपहर सनाए कोट आवत तिस वेद नाय हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे काल कंटक जम तिस ना वधारे नानक दास सदा बलिहारी सेवक संत राम राजा राम मरारी सुई महला पंजवा गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा आनंद बनोद मंगल सुख दाहा चल सकिए प्रभ रावण चाहा साजना की चरनी पहा रहा कर बेंती जन तूर बशाहा जन्म जन्म के किल विकलाहा मन तन प्राण जियो अर पाहा हर सिमर सिमर मान मोकटाहा दीन दयाल करो तसाहा नानक दास हर शरण समाहा सुई महला पंजम वैकुंठ नगर जहां संत बासा प्रभ चरण कमलिद माई नवासा सुन मंतन तुझ सुख दिखलावो हर अनेक बिंजन तुझ भोग पंचावो रहा अमृत नाम पंच मन माही अचर्ज साता के वरने न जाही लो मोआ तृष्णा बुझता की पार ब्रह्म की शरण जनता की जन्म जन्म के पै मो नवारे नानक दास प्रभ कृपा तारे सोई महला पंजवा अनेक बिंग दास के परहरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छड़ाए लियो जन अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहो पर्वत दोख महाबिकराला खिन में दूर किए दियाला सोग रोग विपद पारी दूर पई जपना मरारी दृष्ट ताली नो लड़लाए हर चरण गहे नानक शरण आए सोई महला पंजवा दीन छड़ाई दुनी जो लाए दुई सराई खो ना मीखा कहाए ज्योतिष पावी सोर परवान अपनी कुदरत आपे जान रहा सच्चा धर्म पुन फल कराए दीन के तो से दुनी ना आए सर्व निरंतर एको जागे जित जित लाया ते तित को लागे अगम गोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बलाया तेरा सुई महला पंजवा प्रताकाल हर नाम चारी ईत ऊत की ओट सवारी सदा सदा जपिए हर नाम पूरन होवे मन के काम राव प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ जीवत मरते जल पावे थाओ जो सो सौ सेव जित टोट ना आवे खात खर्च सुख अंध विहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक नाम त्याया सुई महला पंजवा गुर पूरे जपे दयाल दुख बिनसे पूरन पई काल पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा चरण कमल जाई बलिहारा तुझ बिन ठाकर कवन हमारा रहा साध संगत स्यो प्रीत बन आई पूर्व कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचर प्रताप जाल न साके तीने ताप निमक न विसरे हर चरण तुम्हारे नानक मांगे दान प्यारे सुई महला पंजवा से संजो करो मेरे प्यारे जितन रसना हर नाम उचारे सुन बेंती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला रहो जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिसनेरा जन की पूक तेरा नाम हार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सजाना सुई महला पंजवा बैती जात कदे दृष्णा तारत मिथ्या मोह बंदे नित पारच माध वेद पज दिन नित रैणी जन्म पदारत जीत हर चरनी राव करत बिकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं तारत परन पोख संग औद बिहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी शरण समरथ अगोचर स्वामी उदर नानक प्रवंतर जामी सुई महला पंजवा साध संग तरे पै सागर हर हर नाम सिमर रत नागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सब विनसे गुरपूरे मिलता पाप जायन रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ मंत्र निर्मल साच सुहाओ आठ पैर पार ब्रह्म त्याये पूर्व लिखत होए ता पाइये शरण पै जप दीन दयाला नानक जांचे संतर

सर से तीरा ते राम रसायन दिन माते बां पकड़ प्रभा पे काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे उधर स्वामी पर कृपा तारे नानक दासर शरण द्वारे सुई महला पंजवा संत प्रसाद ने चल कर पाया सर्व सुख फिर नहीं डुलाया गुरु त्याय हर चरण मंची ने ताते करते अस्थर की ने राव गुण गावत अचत बनासी ताते काटी जमकी फासी कर कृपाली ने लड़राए सदा आनंद नानक गुण गाए सुई महला पंजवा अमृत वचन साध की वाणी जो जो जपै तिस की गत होवे हर हर नाम।

अस्कर मार बसी पहचान अदल करे बिचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे बार पाईड़ा बार लिए असा मन स पूरी राम फिर राविड़ शब्द रली रा शब्द रली रब रिहा न दूरी राम प्रभ दूर न होई कट कट सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रब ज्यो तिसकी बड़े अमरा डोला मूल अपारा गुर पूरे सच पाइये नानक आपे जोग जोगी नजर करे लिबलाइए फिर उचड़िए माड़िए तिन लोक सरताजा राम हो बिसन पई देख गुण अनहत शब्द अगाजा राम शब्द बचारी करने सारे राम नाम निशान नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन प्रवान पत मत पूरी पूरा प्रवाना ना वे ना जासी नानक गुरमुखा पछाणे प्रभ जैसे अबनासी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सोई शांत महला पहला कर चौथा जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया दान तेरे कट जानना तन चंद दपाया चंदो दपाया दान हर के दुख नीरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सोए परख समोणिए लिया वाह हुआ सोब सती पंच शब्द ही आया जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया हो बलियारी साजना मीता प्रीता ए धन ज्यों जिन गाडिया मन लिखिए दिता लिया तदिया मान जन स्यों से सज्जन क्यों बिसरे जिंदन आया होए रड़िया जी सेती गए रहे सगल गुण अवगुण कोई होए नीता नीता हो बलियारी साजना मीता प्रीता गुण कहोबे बांसला कट बास लहीजे जे गुण ओमण साजना मिड़ साज करीजे साज करीजे गुणा केरी छोड़ अवगण चलिए पैरे पुटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिए जिथे जाए बहिए पला कहिए चोल अमृत पीजे गुणक होवे बासला कट बास लहेजे आप करे किस आखिए होर करे ना कोई आखण तक को जाइए जे भुलड़ा होई जे भूला जाए कहिए आप करता क्यों भुले सुने देखे बाज कहिए दान अण मंगया देवे दान दे दाता जग बताता नानक सच सोई आप करे किस आखिए होर करे ना कोई सोई महला पहला मेरा मन तन गुण रवे मन रपावे सोई गुर की पौड़ी साच के साचा सुख होए सुख सहज आवे साच पावे साच की मत क्यों ठले इस नान दान सुग्ञान मंजल आप छछलियो क्यों छले पर पंच मोह बकार था के कूड़ कपट न दोए मेरा मन नराता गुण रवे मन पावे सोई साहिब सो सलाइए जिन कारण किया मेर लागी मन मेलिए किने अमृत पिया मत अमृत पिया यो मन दिया गुर पै मोल कराया अपना प्रभ आसहज पछाता जा मन साचे लाया तिस नाल गुण का तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा के मिले हर मिले हुए पराया साहिब सो सलाइए जिन जगत अपाया आए गया कि ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम सिंह मन मानिया हर सेती रता साहिब रंग राता सच की बता जन बेंबका कोट असारिया पंच पूना के आप सरंदा जन सच का पिंड सवारिया हम अब गाने तू सुन प्यारे तू पावे सच सोई आमण जान नाथिए सची मत होए अंजन तैसा अंजिए जैसा पेर पावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेव ए कर्म कर्म कराए आपे कीमत कौन अपे वे तंत मंत पखंड न जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसन ते सुजे गुर सब दी ज सच जानिया साजन होमन अपने क्यों पार कर जाए साजन रते सच के संगे मन माए साजन करे रलिया कर्म धर्म सुबाया

जन इस मन को मन वासे जो नित पौधिया दुख रहन वे बिहानिया नित आस आस करेंदिया गुर पाया वे सांझनो मन आस पूरी है चौदिया जाना प्रभ देहो मति छड़ आस नित सुख सौदिया सतन आस चित करे राम राजिया प्रभ हर प्रभ से जड़िए आई मेरा ठाकुर अगम दयाल है राम राजिया करके पाल हे मिलाई मेरे मन तन लोचा गुरमुखे राम राजिया हर सरदा सेज विछाई जा नानक हर पाणिया राम राजिया मिलया सह सुपाही।

संत प्रभु होय दासा जीवत मरिए भजत रे जे थीवे कर्म लिखिया सा गुर सवे जे अमृत पीजे जिस लावे सह त्यानो नान सन पिया हर द्वारे हो बल बल सद कुरबानो सुन बाबरे मा जाने प्रभ मैं पाया सुन बाबे थियो रेहन जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्या तिन सुख पाया बटपागी दासन पाइये थियो न माना सद कुरबाना सगला आप मिटाइए वो तन पा सुदा जिन प्रभ लदा हम तिस पया बिचाया नान दिन सन सुख सा।

नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गए कंठ लाए मिले अंतर जामिया सत संतो बजे बाजे अणहद चुनकारे सुन पै बिनासे सल नानक प्रभ पुरख करने हारे उपजा तत ज्ञान सोरे पिये एक हर बलराम जियो भोरमे ब्रह्म मिलिया को न सके पिन कह पिन कर बलराम जियो विषम पेखे विषम सुनिए विषमाद नदरी आया जल थल महल पूर्ण स्वामी कट कर रिहा समाया जिसते उपजा च समाह समाया कीमत कह न जाए जिसके सतना जाही लखने नान तिसे त्याए हे रासुई शांत महला पंचमा का दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे हर रंग अंदन जागे हर रंग जागे पाप ला पागे मिले संत प्यारिया।

गुरचान लागे परम पागे काज सगल सवारिया सुन सन वाणी सह समझाणी हर नाम जप पिण पागे है बिरमंतना सर स्वामी जीव पिण प्रभ आगे अनहद शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाय हर दुख मनासे रहस उपजे मन पुकाना हम मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुखपणा होरेण साधु प्रभ राधु अपने प्रभावा हाँ बिरमंत नानक दया तारो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चंद जपत निस्तरिया हर चंद त्याए सब फल पाए मिटिया बंजाणा हम पाए पाए तुस पाए हर जप अपने प्रभावा जप एक अलख पार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत न गुर परम खोया जत देखा तत सोए पद पाप हर नामा पूर्ण सांझना के कामा गुर संत पाया प्रभु त्याया गुर संत पाया प्रभु त्याया सगली इच्छा पुनिया हूं ता बिन से सदा सासे प्रभ मिले चिरी बिछुनिया मन शांत आई बजी बधाई मनो कदे ना बिसर है बिरमंत न सतुरणाया सदा पाज जगरी जग दिसर रस हुई शांत महला पंजवा का तीजा एक ओंकार सतगु प्रसाद तू ठाकरो बैरागरो मैं जय कांचेरी राम तू सागरो रतनागरो।

तुम पेर हम भोरिया राम। तुम बड़े बड़े बड़ उच्चे हो इतनी कलहोरिया राम। हूँ कुछ नाही एक तू है आपे आप सुजाना। अमर देश निमख प्रभ जीवा सर्व रंग सरस माना। चरने सने दासे दासी मन मोले तन हरिया। नानक ठाकर सर समाना आपन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम। सोतमा चतुराई तेरी तुम तू जाने जाना राम। सोई जाने सोई पछाने जा।

जिन परम परदा खोला रामम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाक स्यो मन माना हा प्रभु जी पानी पई निकाने सफल जन्म परवाना हा पई मोली पारा तोली मुख जुगत दर खोला हा को नानक हो निरपो होई सो प्रभु मेरा ओला हा सुही महला पंजमा साजन पुर सतगुर मेरा पूरा तिस बिना बना जाना राम मात पिता पाए सुत बंत जी प्राण मन पाना राम जियो पिंड सव तिसका दिया सर गुणा पर पूरे अंत जामी सो सो प्रभ मेरा सर्व रिहा पर पूरे ताकि सन सर्व को सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याण सदा सदा प्रभ को बलिहारे नानक साधु कुरबाणा ऐसा गुरु भागी पाए जित मिलिए प्रभ जापे राम जन जन के किलबे उतरे हा सन तूड़ी नित नापे राम हम तूड़ी नाइये प्रभु तिहाइये बोर जो ना आइये है गुरचानी लागे परम पागे मन चिंदिया फल पाइये हागो नित गाये नाम त्याए फे सोग नाई संतापे है नानक सो प्रभु जी का दाता पूरा जैसे प्रतापे हर हरि हर गुण दे हर संतन के बस

मिटी बलाया साच धर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना साये सोभत हो व्यस्त खलिया गुण दान सुख साग स्वामी जाल थल में ही अल सोही जान प्रभ की सरनाई ही तिस बिना वरना कोई मेरा घर बनया बन ताल बनया पासे हराया राम मेरा मन सोया मीत साजन सासे गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याय साचा सगल इच्छा पाया गुर चरण लागे सदा जागे मन भजिया बधाइया करी नदर स्वामी सुखे गामी हत पर सवारिया ब्रह्मंत नान नित नाम जपिए जियो पिंड जिन तारिया सूही महला पंजमा पैसागरो पैसागर तरिया हर नाम त्याए राम पुसराग हर चरण राधे मैं सतगुर पार लगाए राम गुर साहब जी तरिए बो न मरिए चूके आवन जाना जो किस करे सोई पल मनो ता मन सह समाना दुख ना पूख ना रोग व्यापे सुख सागर सानी पाहे हर हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए सांजना हर मंत दड़ाया हर साजन बसगत कीने राम अपना मन आगे तरिया सर्व ठाकुर दीने राम कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदर थित पाई अंत विनोद सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कभू न जाई साबड भागन सदा सुहागन राम नाम गुण चीने ओह नानक रबे रंग राते प्रेम महारस पीने अंत विनोद पै नि सखिए मंगल सदा हमारे राम अपने प्रभ आप सिंगा शिंगारी शोभा बंती नारे राम सहस

ना पै सागर तरिया पूर्ण काज हमारे गुण गोपाल गावो ने सखियो सगल मनोथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक ओंकार त्याए राम जप एक प्रभु अनेक रव्या सर मंडल छाया ब्रह्म पसारिया ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल तल मही अलपूर पूर्ण तिस बिना नहीं जाहे पेख दासन नानक बिसे आप लय मिलाए सुहुई महला पांचवा अवतर नगर गोविंद गुरु का नाम जा सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए काते आ बसाया राम करते आ बसाया सब सुख पाया पुत पाए सिख बिगासे सुन गुण गावे पूर्ण परमेश्वर कार्य आया रासे प्रभ आप स्वामी आप रखा आप पिता आप माया कोहना सतगुर बलिहारे जिन्हे थान सुहाया कर मंदिर हटनाले सोए जिस बिच नाम निवासी राम संत भगत नाम राधे कटिए जमखी फासी राम काटी जम फासी प्रभ बनासी हरा नाम जिया त्याए सगल समग्री पूर्ण होए मानी छे फल पाए सांसजन सुख माने रलिया दुख दर्द परमनासी सास मारे सतगुर पूरे नानक साध बल जासी दास खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार भम खसमा न किया जिस दी बड़ी बड़ियाई राम आज आज पातन करा खासो प्रभ प्या दयाला हम ये दांसा सुखी बसाए प्रभ आपे कार प्रतपाला जय जस पूरिया जस स्वामी कीमत कह न जाही कोहना सतगुर बलिहारी जिन अवचन नीव रखाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नि सुनिए राम अनहद चोज भगत पाप पंजन अनहद बाजे तुनिए राम अनहद चुनकारे तात बिचारे संत गोष्ठ नित होवे हर नाम राधे।

0: हम पापी राख पपना हदासन दास दासा करिए जा नानक दास दसना। बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मूर्ख अज्ञानमती सनागत पुरख अजन्मा कर कृपा रख लियो मेरे ठाकुर हम पाथहीन आकर्म मेरे मन पज राम नामे राम गुरमुख रस पाइये होर त्याग निफल काम रहो हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अब न कोई मेरे ठाकुर हर जपिए बड़े क्रमा राम हीन तिरक जीवते तेन बड दुख सहमा ओए फिर जोन पाए मंद पागी मूल कर्मा हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे बड़ कर्मा गुरु सतगुरु नाम दराय जन नानक सफल जनमा। बिलावल महला चौथा हमारा चेतन मोह बिख्या हमारा चेत लुब्ध मोह बिख्या बो धर्म तो मैल भरा तुमरी सेवा कर न सके पर हम क्यों कर मुक्त रहा मेरे मन जप नरह नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रतारी मेल सतगुर पार परा रहा हमरे पिता ठाकुर प्रभु स्वामी हर देहो मति जस करा तुमरे संग लगे से उदरे जो संग काष्ट लोह तरा सागत नार हो ची मत मदम जिन हर हर सेव ना करा तीन नार पाग ही न दो चारी और जन्म हुए फिर मरा जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाय संतोख गुर सरा दोनों मैल गई हर पजिया जान नानक पार परा। बिलावल महला चौथा अवो संत मिल मेरे पाए मिल हर हर हर हर कथा करो हर हर नाम बहुत है कालजुग खेवट गुर सब तरो मेरे मन हर गुण हर उतरो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाओ काय नगर मैं राम रस उत्तम क्यों पाइये उपदेश जान करो सतगुर सेव सफल हर दर्शन मेरे संग मेरे अमृत हर रस पियो हरा नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिख गुरमत हारा स मीठा लागा तिन बिसरे सब बिख रसो राम नाम रस राम रसान हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो। बिलावल महला चौथा खत्री ब्रह्म सूद बैस को जापे हर मंत्र ज पैनी गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिन सब रहनी हर जन देखो सतगुर नैनी जो हो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी रहो अनक पाव चित भे बो तेरे हे जा होवे जे बात होवे नी अपना भला सब कोई बाछे सो करे जे मेरे चेतना चिंते नी मन की मत त्यागो हर जन यह बात कठैनी आंदन हारा नाम त्यागो गुर सतगुर की मत लैनी मत समत में तेरे स्वामी
1: जप मन हर हर नाम गोविंदे गुरभागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ स्वागत मूड माया के वधक ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਿਰੇ ਫਰੰਦੇ ਤਿਸਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਜਿਉਂ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਪਵੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਤਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸੇਵ ਕਰਨਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸਾ ਝੂਟੇ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ

गुर पेटिया है मुक्त दाता, हर की हमारी सफल जाता, हर की हमारी सफल जाता। मिल संगते गुण गावनो, मैं राम नाम कर आशा, भाव दूजा बिन सुबनासा, विजयासा हुई नराशी, सो जन मिले हर पासी।

अनंत रूप साहब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया बलावल महला पंजवा सर्व कल्याण किए गुरदेव सेवक अपनी लायो सेव बिघन लागे जप लख पेव तत्

कियो अर्चन दौरी चेत ब्रह्म सखिये मरे गृष्णा द्रोम छाया चंचल संगना चालती सखी अंत तज जावत माया रस भोगण अतरु प्रसमाते इन संग सुख न पाया तन तन हर साल जन सखिए नानक जिनी नाम ते आया जाय बसवड़ भागनी सखिए।

मत बुद्ध सोत नाही चतराई ता मिलिया जा ले मलाई नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया को नानक सफल सो आया बरावल महला पंजवा मात पिता सुत साथ न माया साध संग सब दुख मिटाया रब रिया प्रभ सब मैं आपे हर जप रसना दुख ना ब्यापी राव दिखा भूख बहु तप्त ब्यापिया शीतल पै हर हर जस जापिया कूट जतन संतोख न पाया मंत्र ताना हर गुण गाया देहो भगत प्रभु अंतर जामी नानकी बनती स्वामी बरावल महला पंजवा गुरपुरा बडभागी पाईए मिल साधु हर नाम त्याई पार ब्रह्म प्रभ तेरी शरणा केलवे काटे पाज गुर के चरना रहाओ कबर कर्म सब लोग

मरखवार साक्त नर थीवी राम नाम हुआ रखबारा चख मार साक्त बेचारा निंदा कर पचे कनेरे में।

सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिर समारिया साध जना हुई कृपाला बिकसेसा परवारिया कार्ज सतगुर आप सवारिया बड़ी आर जा हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण बिचारिया राहु बन तरन तिर भवन हरिया हुई सगले जी सधारिया मन छे नानक फल पाए पूर्ण वेश पुजारिया बुलावल महला पंजवा जिस ऊपर होत दयाल हर

राखो अपनी सन प्रभ मोहे कृपा तारे, सेवा कछु ना जानो नीच मूर खारे, मन करो तुद उपरे

दया तार हम अकृत कंधारी लाग परे तेरे दान स्यो न चित खास मारी तुते बाहर किश नहीं पव काटन हारी को नानक सरन दयाल गुर लियो मुग्ध उधारी बिलावल महला पंजवा दोष न कहु दीजिए प्रभ अपना त्याई है जित सेविय सुख हुई कणा मन सोई गाई है कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगण हमारहाउ ज्यो तुम राखू त्यों रहा अवर निचारा न धरिया दर तेरिया एक नाम धारा जो तुम करो सोई भला मन लेता मुक्ता सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता चन पखारो गुर सेवा चन पखारो कर सेवा जी ठाकुर पावे हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे बलावल महला पंजवा मृत सहसे

हरस चाख तथरा पिया मन रस लै हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उठ कमल बेगसना शीत सा सतोख हुए सबू जी तृष्णा दैद धावत मिट गए निर्मल थान बसना।

अंतर्जामिया प्रभ सब करे कराया वत प्रीत कणे करे ठाकुर बिरदाया मत भूलो मनुख जन माया परमाया नानक तिस पात राग सी जो प्रभ पहराया बलावर मल्ला पंजवा माती ते जन साजिया कर दुर्लभ देहि अनक छिद्र मन में ढके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण ए प्रभ ताज रचे जी आन स्यो सुर लिय खे हे रहाओ सिमर हो सास सास मत बिलम करे हे छोट पर पंच प्रभ स्यो रचो तज कूड़े ने

इहो सागर सोई तरे जोहर गुण गाए, सात संगत के संग वसे बड़भागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जने आखी, प्रगट पैसा लो मैं सेवक की राखी राओ। अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाए, अमृत नाम जल संचया गुर पै सहाय। जन मन दुख काटिया सो का थान पाया, काटी सिलक प्रामो की अपने प्रपाया। मत कोई जानो अबर कछ, सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पा।

को मंदिर श्वास वारे उपाव तले जरावती ऐसे कण में ऐठ हटीलो फूल फूल क्या पावते ही पांच दूत मुठ पर ठाडे किस गए फिर आवते दिठना भी अंध ज्ञानी सोई रहे मदमावते ये जाल प्रसार चोक विस्तारी पंखी ज्यो पहावते को नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख ते आवते है बुलावल महला पंजवा हरा नाम पार मोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत जित वो जैसे पांतम बोली रहाओ सहसमायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रह मखला गो सो जो बड़ भागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग।

काट कुठार खासम सिर काटे आखिन में हो गया है खाक मंदा चेतवत चेतवत बचिया जिन रचिया तें दीना ताक पुत्र मीत तन किसी न रहो सो छोड़ गया सब पाई साक ओ नानक तिस प्रभ बलहारी जिन जन का कीनो पूरन बाक बलावल महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेव आपिया वरते स्वामी काज राज किया गुरदेव राहु आद मत प्रभंत स्वामी अपना थट बनायो आप अपने सेव की आपे राख प्रभ मेरे का बड़ प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सब गुरवास की ने जन सकले जान तो चन

चरण हर के चरण जी जोगत वास मेरे स्वामी सर्वसिद्ध तुम कारण करन अज गद प्रव रखता आया सिमरत नानक नहीं डरड राग बिलावल महला पंजवा दो पदे करे अठ माए को अंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभु सकवे तेरा इगे निर्गुण उगे सरगुण केल कर्तवे स्वामी मेरा रहाऊ नगर में आप आरपन आपन प्रा मेरे को सकल बसेरा आपे राज ने आपे राया कह कह ठाकर कह कह चेरा का को दराव का स्यों बलवांचा जय जय बेगो तह तह लेरा

कहाँ पयो तीर्थ वर्त किए राम शरण नहीं आवे, जोग जग निफल ते मानो जो प्रभु जस बिसरावे, मान मोर दोनों को पर हर।

गुरु कया साकार कमाव हो शब्द चीन सहज कर आव हो साचे नाय वडाई पाव हो आपन बूझे लोक बजावे मन का अंधा अंध कमावे दर कर महल ठौर कैसे पावे हर जीव सेविये अंतर जामे कटकड़े अंतर जिसकी जोत समाली तिसने आल क्या चली पहनामी साचा नाम साचे शब्द जाने आपे आ मिले चुके बमाने गुरमुख।

हृदय नाम बसाई नाम रते सदा सुख पाई मनुत मान्या करनी सार गुणत मान्या मुख द्वार नानक गुरमत मान्या परवारे सदार बुलावल महला चौथा अष्टपदियां कर गया रमाई को ओ अंक

तिया पूत छोड़सन यासी आस आस मन बहुत करैया आस आस करे ने बूझ गुर कै शब्द निरास सुख लहिया उपजी तर्क दिगंबर आ हुआ मान दे चल चल गवन करैया पर भवन करे बूझे ने तृष्णा मिल संग साध दया कर लैया सुन सिद्ध सिखे बहुत

एक जन्म के विछड़े जन मेले जा सत सत सतगुर सन पवैया फेज एको एको प्रभ ठाकुर महल न पावे मन मख परमैया गुर गुर करत सन जे आवे प्रभ आए मेरे खिन ढील ना पैया कर कर क्रिया चार बधाई मन पखंड करम कपट लोभिया बेसवा क्या है कर बेटा जन्मिया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्रभ आण आण मेहंदी पी साई आपे कोल कोल अंग लैया जिनको ठाकर कृपा धारी मां पकर नानक कढ लैया राग बुलावल महला पंजवा अष्टपदी कर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उपमा जात न कही मेरे प्रभ की उपमा जात न कही तज आण सरन गही रहाउ प्रभ चरण कमला पार हो जाऊं सत बलहार मन प्रीत लागी ताहे।

जाचो संतरबाल राहु संसार विख्या कूप तम अज्ञान मोहत कूप गह पूजा प्रभु जी दिहो हर नाम अपना दिहो प्रभु तुझ बिना नहीं ठाओ नानका।

एकम एकंकार निराला अमर जोनी जात न जाला अगम गोच रूप न रेखिया खोज तखोज घट घट देखिया जो देख दिखावे तिसको बल जाई गुर प्रसाद परम पद पाई।

नशा के कोए साहब की सेवक रहे सरनाई आपे बख्शे देवड़ी आई तेते ऊपर नाही कोए कौन डरे डर किसका होए गुरमती शांत वसे शरीर शौचीन फिर लागे पीर आवे न जाए न दुख पाए ना मेरा तिस है सुमाए ना गुरमुख वेखे अदूर मेरा प्रसाद रहा भरपूर एक सेवक एक परम भला एक आपे करे हराप कराए को वरते वन कोई मन रोष की जय जे दूजा होए सतगुर सेवे करनी सारी दा साचे साची विचारी थिति वार सब शब्द सुहाए सतगुर सेवे ता फल पाए थिति वार सब आवे जाहे गुर शब्द ने चल सदा सा समाए थिति वार ता जा सच राति बिन नावे सब भरमे काचे मनमुख मरे मर भगति जाहे एक ना चेते दूजे लोभाए।

पहले संग मेली मछली नीर ना बिसराय संतन हमारी पाग कराया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बन हरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अंत मंगल दास का नवल।

राम सो प्रावता जो कत लागिए जिस बिन मर जाइए राम लाजना व्यज्ञानवती दुर्जन भरमाइए राम पत पवन पव त्याग करे को कत ठहराइए राम नानक भगत पाओ हर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल न उचरे बल गईये दो चार रसना राम प्रा भगत प्रसन्न सेव ही काया काक कृष्णा राम प्रम वोही दुख न जाने ही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर वरजे चाहना बिष्टा किरम भसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे हुए मिल बरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हमें बिखते आगण राम ईद उतने डोली है हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रा पाया अपना सा अटा

जाए मन हट कर्म कमावणे थाए न कोई पाए नानो गुरमुख आप विचारी है बिचू आप गुआई आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म बसिया मन आई जमन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल करो तू प्यारी हुए सो लिव लाए जन्म दो कटिए सचे रहे समाए सदा बिलावल आनंद है जो चली सतगुरु पाए सत संगति वह पाओ कर सदा हर के गुण गाए।

जे बहत मंगी साई पाई है जे नाम चित लाई है गोहज गल जी की सतगुरु पास ता सर्व सुख पाई है गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लै जाई है जिस पूर्व में लिखिया सो हर गुण गाई है रोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे भरा मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सफल है यह कोई छे तिहा बल पाए गुर का शब्द अमृत है शब्द तृष्णा पहु गवाए हर असपीर संतोख हुआ सच बसिया मन आए सच तिहाए अमरा पद पाया अनहद सद बजाए सचो दत पसरिया गुर के सह सुपाए नानक जन अंदर सच है से जन छपे ना किसे देश पाए महला तीजा गुरु सेवा ते हर पाइए जा को नजर करे मानस ते देवते पहे सची पग दे होमे मर मलाइन गुर कै शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम बढ़ियाई दे पौड़ी गुरु सतगुर बिच नावे की बड़ी बढ़ाई हकाते आ बधाई सेवक शिक्षा वेख वेख जीवन उन्हां अंदर हिरदे पाई निंदक दुष्ट वडियाई वेखना

कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम संसर नहीं दयाल मोह संसर पापी बिलावल निठुर कोरी का गरियाना लिप्त जियो गयो ताना बना कछु न सूझे हर हर रास लपट्यो हमारे कुल कौने राम कयो जबकि माला लई नपूते तब ते सोख न पयो रहो सुनो जिठानी सुनो दरानी अचरज एक पयो सासूत इन मुंडिये खोए ये मुंडिया क्यों न मोयो सर्व सुखा का कर स्वामी सो गुर नाम दयो संत प्रहलाद की पैजन राखी हरनाक्ष नाख बदरे हरनाक्ष नाख बिदरे हो करके दे पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कैद कबीर सगल पाप खंडन संत लय उदरे हो बिलावल को हर समान ही राजा ए पूत सब देश चार के झूठे कर देवा जा रहा तेरो जन होए सोए कत डोला तीन पवन पर छाजा हाथ पसार सका को जन को बोल सकना दाजा चेत चेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा परम चूको रूप प्रहलाद नवाजा बिलावल राख लियो हम ते बिगरी शील धर्म जब भक्त न की निहाय भाण टेढ़ पगरी रहो अमर जान संची ए काया ए मिथ्या काची कगरी जिन्हें स्वाज नाज हम किए जिन्हें निवाज साज हम किए तिसे विसार अवर लगरी संत तोहे साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीरे बिनती सुनियो मत कालो जम की खबरी बिलावल दरमान दे ठंडे दरबार तुझ बिन सुरत करा को मेरी।

नामो संगी जत कर जात नामो हिमा लागा मीठा जल थल समय नामो डीठा नामे दरगा मुख उजले नामे सगले कोल उदरे नाम हमारे कारसीत नाम संगे मनुआ गीर नामे हम निरपौ पये नामे आवन जावन रहे गुरपुरा मेले गुणतास कौ नानक सुख सह निवास गुण मल्ला पांचवा निमाने को जो दे तो मान सगल भूखे को करता दान गर्भ को उनमें रखनहार तिष ठाकुर को सदा नमस्कार ऐसो प्रमन मायते आए कटे कट जत कदा सहाय रहो राम कराओ जाका एक समान पीठ हस सगल पुराण बियो पूछ न मसल तरह जो कुछ करे सो आप करे जाका यंत्र जान सोए आपे आप निरंजन सोए आप अकार आप नंकार काट काट काट सब काट आधार नाम रंग भगत पै लाल जस करते संसदा निहाल नाम रंग जन रहे गाय नाम तिन जन लागे पाए गुण महला पांचवा जाकै संग ए मन निर्मल जाकै संग हर हर सिमरन जाकै संग कलि खोय नास जाकै संग हृदय प्रकाश से संतन हर के मेरे

राम राम राम कीर्तन गाए रमत राम सब रहे समाए संत जनाम बोलो राम सब ते निर्मल पूर्ण काम रहाओ राम राम तन संच भंडार राम राम राम कर आहार राम राम विसर नहीं जाए कर कृपा गुरु दिया बताए राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लिव लाए राम राम जब निर्मल पाए जन्म जन्म के किल गए रमत राम जन्म मरण निवार उचित राम पै पारे उतार सब ते उच्च राम प्रगास निष्भाष जब नानक दास कुण महला पांचवा उनको खसम की नी ठाक हारे दास संगते मार विदारे गोबिंद भगत का मैल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सेठ के पंच सिकदार राम भक्त के पानी हार हाउ जगत पास ते लेते दान गोबिंद भगत को करें सलाम लूट लें सागत पद खो मैं सात जना पग मल मल तो मैं पांच पूज जने कमाए उत्पज खेल कर जगत वे आए तीन गुणा का संग्रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छाए जिसके सेतन रखे हटाए कौ नानक भगत प्रसार बिन भक्ति सहो खुआर कुण महला पांचवा काल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुखी नो ठा जब जब अमृत नाम अगाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपत जन पार परे जन्म जन के पाप हरे रहो गुर के चरण दावर तारे अग्न सागर ते उतरे पारे जन्म मन सब मिटी उपाद प्रभ सुन लागी सह समाद थान सुनंतरे को स्वामी सगल कटा कय अंतर जामी कर कृपा जा कौ मात दे आठ पैर प्रभ का नाव ले जा कह अंतर बस प्रभ आप तक हृदय हो प्रगास भक्त पाए हर कीर्तन करिए जब पार ब्रह्म नानक निस्तरी है गुण महला पांचवा गुर के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध स्तंते मार हो रही है सगल कीरी ना कट कर मैया समय चीना इन विद्रोहों गोपाल गोविंद धन धन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पैर हर के गुण गाओ जी प्राण को है सुहाओ ताजो मान जान प्रभ संग शांत प्रसाद हर्षो मन रंग जिन तू किया तिसको जान आगा दर का पावे मान मंत्र निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की जन्म गर वाला ओ दयाल देव प्रभदान नानक जप जीवा प्रभ नाम कुण महला पांचवा तू दीप सेवा गोपाल अनक बार बंधन करतार प्रभ की शरण गई सब त्याग गुरु सु प्रसन्न भय वड पाग आठ पैर गाया गोविंद धन धन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ हर गुण राम पय आनंद पार बम पूर्ण बख्शंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मन दुख मेट मिलाए कर्म धर्म ए तत् ज्ञान साध संग जपिए हर नाम सागर तर बोहित प्रभ चरण अंतर जामी प्रभ कारण करण राख लिए अपनी कृपा तार पंच दूत भागे विकराल जुए जन्म न कब हुआर नानक का अंकिया करतार गुण महला पांचवा कर कृपा सुख अंध करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभु कृपाल दयाल गोविंद जी जंत सगले बुशिंद तेरी शरण प्रभु दीन दयाल पारम जब सदा निहाल रहाओ प्रभु दयाल दूसर कोई नाही कटकटे अंदर सर्व समाई अपने दास का हल पल सवार पद पावन पवे तुम्हारा औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग शोक मिटे प्रभु त्याए मन भाष पूर्ण फल पाए करण कारण सुमरत दयार सर्वनिधान महाविचार नानक बख्श लिए प्रवे आप सदा सदा एको हार जाप कुण महला पांचवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की समिटा बलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत रिया संसार बड़ पागी पाया पुरखो पा रहा जो जन करा कीर्तन गोपाल तिसको पो न सका जमकाल जग मैं आया सो प्रवाण गुरमुख अपना खसम पछाण हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटे उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब का सवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा कुण महला पांचवा भव सागर बोध हर चरण सिमरत नाम नाई फिर मरण हर गुण रमत नाई जम पंथ मां विचार पंच दूत मंत तो शरणाई पूर्णनाथ जंत अपने को दीजा हाथ रहाओ सिमरत शास्त्र भेद पुराण पार मुंका क्रम ख्याण जोगी जति बैसनु रामदास वितनाई ब्रह्म अविनाश करण पला करें शिवदेव तिल नहीं बूझा लख पे प्रेम भक्त जिस आपे दे जग मैं बिरले के ही के मोहि निर्गुण के शिव नाय सर्व निहंत्री दृष्टि माए नाहक दीन जाचा त्रि सेवा कर कृपा दीजा गुरुदेवा कुण महला पांचवा संत का लिया तरत बेदारो संत का निंद आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उधारो तत्कण ताल सोई संत जे पावे राम
संत गोविंद का एक काम रहाऊ, संत का ऊपर दे प्रभात, संत के संग बसे दिन रात, साहसा संता प्रतपाल, संत का दुखी राज ते टाल, संत की निंदा करो न कोय, जो निंदा सब पतन होए, जिसको राखा सृजनहार, चक मारो सगल संसार, प्रभु ने का पया विसास, जीव पिंड सब तिसकी रास, नानक जी प्रतीत, मन मुखार, गुरमुख साध जीत, कुण महला पांचवा, नाम निरंजन नी नारायण, रसना सिमृत पा बिलायण, रहाउ नारायण समय निवास, नारायण कटकट प्रगास, नारायण कहते नरक न जाए, नारायण सेव सगल फल पाए, नारायण मन माये दार, नारायण बोध संसार, नारायण कह जम भाग पलायन, नारायण दंत भाने डायण, नारायण सद सदमुख छिंद, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप, नारायण सत्संग नारायण, बारंबार नारायण गायण, भस्त गोचर गुर मिल लई, नारायण उठ नानक दास कई, कुण महला पांचवा, जाको राख राखण हार, तिसका अंग करे निरंकार, मत कर मैं यज्ञ जो है, काम क्रोलो मोह न पो है, सा संग जप निरंकार, निंद कै मुँह लागा छार, राम कवच दास का सुना, दूर दोष तिस पोत नाय, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरणाए, जो जो शरण प्यार राय, सो दास रखे अपना कंठ लाए, जे को बहुत करे अंकार, उखिन में रुलता खाकू नाल, है पी साचा हो बनहार, सदा सदा जाई बलहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानके प्रभु प्राण।

ना ही बिनसन आए जाए, आजुगा दीरा समाये, ना इस उस नहीं सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस हरक नहीं सोग, सब इसका करण जोग, ना इस बाप नहीं समाया, ए परम प्रहोता आया, पाप उनका स्लेप न लागे, कटकट यंत्र सारी जागे, तीन गुणा शक्ति पाया, महा माता की है छाया, छल अचेत भेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ताकि गतमित कछु न पाए, नानक तक बलबल जाए, गुण महला पांचवा, संतन का बलहारा जाऊं, संतन का संग राम गुण गाऊं, संत प्रसाद केल विकसव गए, संत शरण वुड पागी पाए, राम जब कछु विघ्न व्यापै, गुरु प्रसाद अपना प्रभु जापै राव, पार ब्रह्म जब हुए दयाल, साधु जन की करै रवाल, काम क्रोध स्तंते जाए, राम रत्न वसै मने आए, सबर जन्मता का प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान, पाए भगत प्रभु कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रो सच व्यापार, दा जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जान तूर, रागुण अष्टपदिया महला पंजमा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर नमस्कार पूरे गुरुदेव, सफल मूर सफल जागी सेव, अंतर जामी पुरख विदाता, आठ पैर नाम रंग राता, गुरु गोबिंद गुरु गोपाल, अपने दास को राखण हार हाओ, पातशाह श्याम राव पति आए, दुष्ट अंकारी मार पचाए, निंद कै मोकी न रोग, जय जयकार कर सब लोग, संतन कै मन में आनंद, संत जपै गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख ऊजल पए, सगल थान निंद के गए, साल साजन सदा सलाए, पार बम गुरु वे परवाहे, सगल पै मिटे जाकी शरण, निंद कुमार पाए सब धरण, जन की निंदा करे न कोय, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जने एक ते आए, जमुआ ताक निकट न जाए, जन निर्भय निंद कहंकारी, जन पल मान निंद कवेकारी, गुर का सिख सतगुरु ते आया, जन उभरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत वचन वरत हर द्वारे, जैसा करे सु तैसा पाए, अभिमानी की जड़ सर पर जाए, नी धरिया सतगुर धर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिसगुर बलहारी, जाकर सुन पै सुवारी, रागुण बाणी भगतां की कबीर जी, घर पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद, संत मिला कि सुनिया कही है, मिला संत मष्ट कर रही है, बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम राव रही है राव, संत से बोले पुकारी, मूर्ख से बोले झख मारी, बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे विचारा, कहो कबीर छूछा घट बोला है, भरया हो सो कबो न डोला गोंड, नरु मरै नर काम न आवै, पशु मरे दास का सवार है, अपने कर्म की गात क्या मैं जानो, अपने कर्म की गात मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे रहो, हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला, कहो कबीर तब ही नर जागा है, जमका डंड मुंड में लाग गए गोंड, आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा प्रखोतम, घट बिन सह गगन न जाए ले, मोहे बैराग पयो, ए जियो आए कहाँ गयो रहो, पांच तत्व मिलकाया।

कौन बुझा विद जाना उत्पु चलते आप कर चीना आपे तत्व छण ऐसा ज्ञान बिचारा कोई तिस्ते मुक्त परमगत होई। ऐसा ज्ञान बिचारा कोई तिस्ते मुक्त परमगत होई राव दिन में रैन रैन में दिनियर उसन सीत विद सोई ताकि गत मिले अवर न जान गुर बिन समझ न होई पुरख में ना नर में पुरखा पूजो ब्रह्म ज्ञानी तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख कथ कहानी मन में जो जोत में मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन के साथ बलहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम करी महला पहला जहाँ हर प्रभु कृपा तारी तहाँ मैं विचो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बिचारी सो हर जन हर प्रभु पावा एनस भगत करे दिन राती ला छोड़ हर के गुण गावै रहो तुम बाजे अनहद कोरा मन मान्या हर समोरा गुर पूरा सच माया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद वेद गुरु बाणी मन राता सारंग पाणी त तीर्थ वर तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जय आप गया पो पागा गुर चरणी सेवक लागा गुर सतगुर परम चुकाया कौ नानक शब्द मिलाया राम करी महला पहला साधन भोजन मांगत भागै खुदया दुट चलै दुख आगै गुरमत नहीं लई नी दुरमत पद खोई गुरमत भगत पावै जन कोई जोगी जोग सहज कर वासै एक दृष्ट एको कर देख्या पीख्या पाई शब्द त्रिपता स रहौ पांच बैल गड़िया दे तारी राम कला ने भय पत सारी तह टूटी गांडो सिर पार लकड़ी बिखर जरी मंज पार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सुख बेयोगी भक्त नाम भोगत नाम गुर शब्द विचारी असर कंध जपै नकारी सहज गोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन में मुद्रा हर गुर सरना नानक राम भक्त जानु तरना एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम करी महला तीजा घर पहला सतयुग सच कह सब कोई कर कर भगत गुरमुख होई सतगुर धर्म पैर है चार गुरमुख बूझा को विचार जुग चारे नाम डियाई होई ये नाम लागा सो मुक्त होवै गुर बिन नाम न पावै कोई रहो त्रेता कलकिनी दूर पाखंड वर्त हर जानन दूर क्रम बूजा सूजी होई अंतर नाम सह सुख होई द्वापर दूजा दुबदा होए परम पुला ने जाना दोए द्वापर धर्म दोए पैर खाए क्रम खोए तो नाम दृढ़ाए कलयुग धर्म कलाए करहाए एक पैर चले माया मोह बधाए माया मोह अत गुबार सतगुरु भेटा नाम उदार सब जुग में साचा एको सोई सब में सच दूजा नहीं कोई साची कीर्त सस कोई गुरमुख नाम बखाना कोई सब जुग में नाम उत्तम होई गुरमुख बिरला बूझै कोई हर नाम ते आई भगजन सोई नानक जुग जुग नाम वड्याई होई राम करी महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जे वडभाग हुआ वडभागी हर हर नाम ते आवै नाम जपत नामे सु पावै हर नामे नाम सुमावै गुरु भगत करो सत प्राणी हृदय प्रकाश होवै लागै गुरम तो हर हर नाम सुमाणी राव हीरा रतन जवेर माणक बहु सागर भरपूर किया जिस भाग होवै वडमस्तक तिन गुरमत कढ कढ लिया रतन जवेर लाल हर नामा गुर काट तली दिखलाया भागहीन मन मुख नहीं लिया त्रिणोल लाग छुपाया मस्तक भाग होवै तुर लिखिया तां सतगुर सेवा लाए नानक रतन जवेर पावै धन धन गुरमत हर पाए राम करी महला चौथा राम जना मिल पया आनंदा हर नीकी कथा सुनाए तुरंत मैल गई सब निकल संगत मिल बुद्ध पाए राम जन गुरमत राम बुलाए जो जो सुना का सो मुक्ता राम जब सो आए राव जेवड़ भाग हुआ मुख मस्तक हर राम जना पेटाए दर्शन संदे कर कृपा समदाल दुख ले जाए हर के लोग राम जन नीके भाग ही न सिखाए ज्यो ज्यो राम कहे जने उच्चे नर निंदक डंस लगाए त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जान नहीं पाए हर के सगा सगाए चे हर के चोर वे मुख मुख काले जिन गुर की पैज न पाए दया दया करो हर रख दया दया करो राखो हर जियो दया दया कर राखो हर जियो हम दीन तेरी शरण आए हम बारक तुम पिता प्र मेरे नानक बख्श मिलाए राम करी महला चौथा हर के सगा साध जन नीके तेरे ऊपर हाथ बतावै गुरमुख साध सही प्रभ पाए कर कृपाया मिलावै राम मोको हर जन मेल मन पावै अमे ओमे और रस मीठा मिल संत जना मोख पावै राव हर के लोग राम जन उत्तम मिले उत्तम पदवी पावै हम होत तेरी दास दासन की मेरा ठाकुर खी करावै सेवक जन सेवा से भागी निज मन तन प्रीत लगावै बिन प्रीति करै बहु बाता कूड़ बोल कूड़ फल पावै मुको तहर कृपा जग जीवन दाते हर संत पगीले पावै ओ काटो काट माट से राखो जित नानक संत चढ़ियावै राम करी महला चौथा जे वट भाग हुआ वड मेरे जन मिलदिया ढल ढिल न हलाइए हर जने अमृत कुंड सरनी।

के उड़भागी तित नवाइया राम मुको हरजन कर लाइया हम पानी पखा पीसो संत आग पग मल मल धूर मुख लाइया राहो हरजन वडे वडे वडी उचे जो सतगुरु मेल मिलाइया सतगुरु जेव डे अवर न कोई मिल सतगुरु पुरख त्याइया सतगुरु शरण परे तन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाइया एक अपने सुहाए आए बै गुर आग जो बगल समाद लगाइया बगला काग नीच की संगत जाय क्रंग भिखू मुख लाइया नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराइया राम करी महला चौथा सतगुर दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर आया हम चेरी होए लगे गुरु चरणी जिन हर पव मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम पाया मैं हर बिना बिना कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया।

कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुणा विचारो कोई, भाटी का गा तुप है स्वामी, मानस की का ते ही, मेरे मन सबगुर से सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावो, तेरे दुख न व्यापै कोई राव, काचे भांडे साय न वाजे, अंतर जो समाई, जैसा लिख त्रिगा तुर करता है, हम तैसी कित कमाई, मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चित न आवा, मोह अंध लिपटाना, इन किया सोई प्रभु जाना, हर का मैल पारा, भगत करी हर के गुण गावा, नाम दास तुम्हारा, राम करी महला पांचवा, पवो चरणा तली उपरे आवो, ऐसी सेव कमावो, आप से ऊपर सब जानो, तो दरगा सुपावो, शांति है संतो ऐसी कथो कहानी, स्वर पवित्र नर देव पवित्र, किन बोलो मुखमुख बाणी रहो, पर पंच छोट सहज कर बैसो, झूठा को न कोई, सतगु मिलो नवानंद पावो, इनमें तत्व लोई, परम चुकावो गुरमुख ले लावो, आत्म चीन पाई, निकट पर जानो सदा प्रभु हाजर, केसो करो बुराई, सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता, सहज सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी, तन तन से जन जिने कल मैं हर पाया, जन नानक सतगुरु बानी, राम कली महला पांचवा, आप तो हर खना जावत दुखा, न व्यापै मन रोगनी, सदनंद गुरु पूरा पाया, तो उतरी सगल बेयोगनी, ए विध है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग न व्यापै, ता हर हर हर रस भोगनी राव, स्वर्ग पवित्रा, मृत पवित्रा, व्याल पवित्र लोगनी, आज्ञाकारी सदा सुख पुंचा, जब कद वेखो हर गुनी, न शिव शक्ति जल नहीं पवना, तय कारणी मेदनी, सतगुरु जो कथा निवासा, तय अवगत नाथ अगमतनी, तन मन हर का तन सब हर का, हर के गुणों क्या गनी, कहो नानक हम तुम गोर खोई है, अम्बे अम्ब मिलोगनी, राम करी मल्ला पंचमा, त्रै गुण रहत रह निरारी, साधक सिद्ध न जाना, रतन कोठी अमृत संपूर्ण, सतगुरु कह खजाना, आचार्य किस कह न जाई, बस तो गोचर पाई रहो, हो नाई कुछ करना जो कहा, क्या को कह सुनावे, कथन कहना सोजी नाई, जो पेख है तेज बाणे आवे, सोई जाना करना हारा, कीता क्या विचारा, अपनी गतम आपे जाना, रपे पूर भंडारा, ऐसा रस अमृत मन चक है, तुरत रहे अगाई, कौन नानक मेरी आसा पूरी, सतगुरु की शरणाई,

कह सीता ती एका एक तू ही एका एका तू राया तो कृपा ते सुख पाया रह तू सागर हम हंस तुम्हारे तुम मैं माणक लाला तुम देव तिल शंकर मानो हम पूछे सदा निहाला हम बारक तुम पिता हमारे तुम मुख देवो खीरा हम खेला सब लाल लडावा तुम सदगुणी गहीरा तुम पूर्ण पूरे संपूर्ण हम पी संग गाय मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कह न जाए राम कली मल्ला पंचमा करकल तार पखावज नैनो माथा बजर बाबा करणो मध बासरी बाजा जीवा तुने आगाजा नित करे कर मनुआ नाचा आने कुंगर साजा राम को निर्तकारी पेखा पिकण हरदय अल्लाह जेता सा शिंगारी राव अखार मंडली धरण सुभाई उपर गगन चंदवा पमनु चोला करते केला जलते उपत हुआ पांच तत् कर पुत्रा कीना किरत मिलावा हुआ चंद सूरज जरे चिरागा चौक कुंट भीतर राखे दस पात पांच संगीता एक है भीतर साथे भिन्न भिन्न होए भाव दिखावा सब निरारी पाखे कर कर ने तो है दिन राती कटकड़ वाजा तूरा एक न जावा एक पवाए आए जाए होए तूरा कौन नानक सो बोर ना नाचा है जिस गुर पेटा पूरा राम करी मल्ला पांजवान ओंकार एक तुन एका एक राग लापा एका देसी एक दिखा मैं एको रह ब्यापा एका सुरत एको एका सुरत एकाई सेवा एको गुरते जापा पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गाओ छोड़ माया के तन सुवार पांच बचित्र करे संतोखा सा सुरा लै चाल बाजा मान तान तजताना पाऊन अंबिंगा काल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर दान हदूरे कुंगर खड़क त्याग विसूरे सहज आनंद दिखावे पावे ये नृत्यकारी जन मनावे जे को अपने ठाकुर पावे कोट मादे कीर्तन गावे सह संकी जा मुंटे कहो नानक कीर्तन एक राम करी महला पांचवा कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवा कुसैया कोई अल्लाह है कारण करण करीम कृपा तह रहीम रहो कोई ना वह तीर्थ कोई हज जाए कोई करे पूजा कोई सिर नवाए कोई पढ़ा वेद कोई कतेब कोई उड़ा नील कोई सफेद कोई कह तुर कोई कह हिंदू कोई बादशाह पिस्त कोई सुरगिंदू कौन नानक जिन हुकुम पछाता प्रभ साहब का तन भेज जाता राम करी महला पांचवा पवन में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया माटी माटी होई एक रोबन हारे की कवन टेक कौन मुआ रे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा ये तो चलत पैर आओ अगली किस खबर न पाई रोबन हार पे उठ सदाई परम मौके बांधे बंद सुबन भय पखड़ाए अंध ये तौ रज रचा उस करतार आव जावत हुकुम पार न को मुआ न मरना जो न मिल सब नाशी हो जो ये जानो सोए ना जन हरे को बल जाओ कहो नानक गुर परम चुकाया ना कोई मरे न आवे जाया राम कली महला पांचवा जब गोविंद गोपाल लाल राम नाम सिर तू जीवै फिर न खाई महाकाल राव कोट जन्म भ्रम भ्रम भ्रम आयो बड़े भाग सत्संग पायो बिन गुर पूरे नहीं उधार बिन गुर पूरे नाही उधार बाबा नानका कहे विचार राग राम कली महला पांचवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद चार पुकारे ना तू माना खटपी का बात बुखाना दस हटी मिले को कहया था भी जोगी पैदना लहया कि क्रिया नूपाजा जोगी आमत मारो।

गुर पूरा लियो समझाए रहो कर कृपा राखो गुर शरणा कृप कराए हर के चरणा भी सोसे जा मन ठहराने गुर पार ब्रह्म एक ही जाने जो जो की नाम तिसके दास मेरे को सकल निवास ना को दूत नहीं बहराई कल मिल चले एक पाई जाको गुर हर दिए सूखा ताको बोर न लगे दुखा आपे आओ सर प्रतपाल नानक रातो कर रंग गोपाल राम करी मल्ला पांचवा मुक्ते पड़ता टीका सत हृदय राम ने पूर्ण रात उपदेश करे कर लोग दृढ़ावे अपना कहे अपना कमावे पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध निवार पंडित रहो आगा राखे सार ग्राम मन की नूंदा दिस विश्राम तिल चरावे पाई पाई लोक बिचारा अंत कमाए खटकर मारा सुन धोती पाठ करे पड़ा नित पोथी माला फेरा मंगा विभूत ए बिद कोई न तरे उम्मीद सो पंडित गुरु शब्द कुमाए त्रै गुण की ओ सुत्री माए चतुर वेद पूर्ण हर नाए नानक तिसकी शरणी पाए राम कली मल्ला पांचवा कोट बिघन आवे नेर अनक माया ताकी चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको माया भरी करतार छे साई होए भगवान अनक जतन राखा सरंजाम रहाउ करता राखा कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन व्यंत मैं माता की केत।

संगमिल पै प्रगास सह सुख आसनवास पूरा सतगुर दिया विसास नानक होए दासन दास राम करी महला पांचवा दोषना दीजा काऊं लोग जो कमावन सोई भोग अपन कर्मा पई बंद अपन जावन माया तंद ऐसी जानी संत जनी प्रकाश पाया पूरे गुर बचनी राव धन तन कल्त मिथ्या विस्तार हैवर गैवर चालनहार राज रंग रूप सवकूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाई रे सगल पसारी सोग हर दे वरदानी सख्त इव ही करत बिहानी हर का नाम अमृत कलमा है ए निदाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस तूठा कट क्रमैया तनी डीठा राम करी महला पांचवा पंच शब्द पूर्ण नाद अनज बाजे चरज विस्माद केल करन संतर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद पवन साध संग बैस गुण गावे तरोग सुख नहीं जन्म मरण रहाउ उहा सिमरै केवल नाम बिरले पावै ओ बिश्राम भोजन पाओ कीर्तन आधार निचले आसन वे शुमार डिगना डोला कतुण तावै गुरु प्रसाद कोई मैल पावै ब्रह्म पै मोह न माया जाल सुन समाध प्रभु कृपाल ताका यंत्र पारावार आपे गुप्त आपे पासार जाका यंत्र हर हर स्वाद कहण न जाई नानक विस्माद राम करी महला पांचवा पेर संग पारम चित आया संगत कर संतोख मन पाया संत चरण माथा मेरो पौत अनकबार संतन डंडौत एवन संतन का बलहारी जाकी ओट गई सुख पाया राखी कृपा तारी रहा संत चरण तोहे तो पीवा संत दर्श पे पिख जीवा संत की मेरे मन आस संत हमारी निर्मल रास संत हमारा राख्या पड़दा संत प्रसाद में कौन करदा संत संग दिया कृपाल संत सहाई पहे दयाल सुरत मत बुद्ध प्रगास गहर गंभीर अपार गुणतास जी जंत सगले पाल नानक संत देख नाल राम करी महला पांचवा तेरा काज ना गिरे राजमाल तेरा काज न बिखज जाल इष्ट मीर जान सब चले हर हर नाम संग तेरा चले राम नाम गुण गाय ले मीता हर सिमर तेरी लाज रहे हर सिमरत जाम काश न कह राव बिन हर सगल निरार्थ काम सोना रूपा माटी दाम गुर का सब जा मन सुखा इया अंतर उजल मुखा कर कर थके बड़े बडेरे किन्हीं न किए काज माया पूरे हर हर नाम जपै जन को होए ताकि आसा पूर्ण होए हर भक्त को नामेदार संति जीता जन्म पार हर संत करे सोई प्रवान नानक दास ताका कुर्बान राम करी महला पांचवा सिंचन दारू दे दुख लोग तेरा काज न विराजो करम कार हो वरत अंग जमकी जेबड़ी तू आगे बंद छट बडाणी तात मूड़े इहा बसना रात मूड़े माया के माते तै उठ चलना राच रहो तू संग सोपना रहो फल व्यवस्था वार के अंद पर जो बुन लागा दुर्गंध तृतीय व्यवस्था सिंचे माए भेद पया छोट चले पिछताए चिरंकार पाई दुर्लभ दे नाम भी होनी हो खे पशु प्रेत मोहते बुरी तिसना बूजा जिने श्री सुन करतार गोविंद गोपाल दीन दयाल सदा कृपाल तुम्हें छुड़ावो छुटके बंद पक्ष मिलावो नानक जग अंद राम कली महला पांचवा कर संजोग बनाई काज ते संग्रह याना राज प्रत पारा निसार समार अंत की बारी उठ सिंधार नाम बिना सब झूट परानी गोविंद भजन में अवर संग्राते ते समाया मूठ परानी राव तीर्थ नाय ना उतर समेल।

प्रभु की आज्ञा मन में मानी महापुरुष का संग पया रहा सगल पुत्र सर्व निर्मला जो वर्ताए सोही पला जय राखा सोही मुक्तान जो ज पाए सोही नाम अठसर तीर्थ जय सात भक्त रह तय बकुंठ जय नाम उचर सर्व आनंद दर्शन पाई है राम गुणा नित नित गाई है आपे कटकड़ा व्याप त्याल पुरुष पर्ग प्रताप कपट खलाने भ्रम नाठे दूरे नानक गुर भेटे पूरे राम करी महला पांचवा कोट जापता विश्राम रित बुद्ध शुद्ध रिद बुद्ध सिद्ध गुसुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस है गुरमुख नाम ने खुर दैवस है हर के नाम की बड़े आई कीमत कहना जाई राव सूर वीर तीर मत पूरा सह समाज तुन गर गंभीरा सदा मुक्ता के पूरे काम या कर दैवस है हर नाम सगल सुख आनंद रोगम।

आग भरे पूर्व ला भाग जन्म जन्म का सोया जाग कही गिलान साधक संग मंत्र रतो हर कह रंग राखे रखना हर दयाल ना किस सेवा ना किस काल कर कृपा प्रभु की नींद दया पूर्ण दुख में काल लया सुन सुने उपजो मन में चाओ आठ पैर हर के गुण गाओ गावत गावत परम गत पाई कृपसा नानक लिवलाई राम कली महला पंजमा कौडी बदले त्याग रतन छोट जाए ताऊ का जतन सो सांचा जो हो ची बात माया मोया टेढ़ो जात भागे तलाय नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही राव अमृत कौरा बिख्या मीठी साक्त की विदना नोंडीठी कूट काट हंकारी जाना नाम सुनत जन बिछुड़ साना माया कारण सदी चूर है मन मुख कवे न उसत करे निरपो निरंकार दा तार जिसो प्रीत न करे गवार सब शां सिर साचा शाह वे मोहताज पूरा पाया वो मगन लपट्यो भ्रम गिरे नानक तरिया तेरी मे राम करी मल्ला पंजमा रहन तिथ जपो हर नाव आगा दरगाह पावो ताओ सदा आनंद न होवी सोग कौन व्यापै होम रोग खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी विष्णु विष भय विष्मांदा परम गत पावे हर सिमर पुरानी राव घर में देखो सकल विचार नाम बिना को सकन तार सकल पावन चाल संग पावजल तरिय प्रभु कह रंग देही तो इना उतरा मैल हम व्यापै दूधा बैल हर हर खुद जो जन खाए थका रो सकल मिट जाए कर कृपा परम दयाल मन ते कहो न बिसर गोपाल तेरे दास की हुआ तूर नानक की प्रभु श्रद्धा पूर राम करी महला पांचवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ दूजा नाई कोय तू सम्रत पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याय पूरा जिस कर्म तरन तरन प्रभु तेरो नाम एका शरण गई मन मेरा तुझ दूजा नाई ठाव रहो जब जब जीवा तेरा नाम आगा दरगाह पावो ठाव तू को तेरा मन ते जाए दोनों तुम सरा चरण आए चरण कमल से लागी प्रीत कुरपुर की निर्मल रीत पह पागा निर्भव मन बसै अमृत नाम रसना नेत जब कोट जन्म जन्म कोट जन्म के काटे भाहे पाया लाभ सच्चा तहन लाए टूट ना वह खोट भंडार नानक भगत सोए हर द्वार राम करी महला पांचवा रतन जुए हर नाम सत्संग दो ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भक्ता वाला होता मेरे राम को भंडार खात कर कष्ट टूट न आवे अंत नहीं हर पारा वार आओ कीर्तन निर्मोल कहीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हत राखी कूंजी सुन समा गुभाते आसन केवल ब्रह्म पूर्णता वासन भक्त संग प्रभु गोष्ठ करत तरख न सुख न जन्म न मरत कर कृपा जी ध्याव दवाया साध संगत न हरतन पाया ध्यान पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी आस राम कली महला पांचवा मैं माना जाना भेद ब्रह्मे नी जाना भेद अवतार न जाना अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत अपनी गति आप जाना सुन सुने खाना राव शंकरा नहीं जाना देव खोज हारे देव देविया नहीं जाना मरम सब ऊपर लख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोरा आपे मेल एक परम एक भक्ति लाए अपन की आया आप जनाए संत की सुन साची साखी सो बोले जो पेख है आखी नहीं ते लेप पुन पाप नानक प्रभु आपे आप राम कली महला पांचवा किसु काज ना कियो जान सुरत मत नाही किस ज्ञान जाप ताप सील नहीं धर्म किसु न जानो कैसा कर्म ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिन दूजा वर न कोई भूल चूक प्रभ तेरे राम मेरे दिन बोधन सिद्ध प्रकाश बिखा ब्याह के गाम मैं बास करण हार मेरे प्रभ एक नाम तेरे की मन में टेक सुन सुन जीवो मन विश्राम बाप खंड प्रभ तेरो नाम तू गंत जी का दाता जो जना वंतन तू जाता जो पायो तिस्तरी आस सगल राधे प्रभु गुणतास नांग दास तेरा कुरबान बेअंत सामरा मेहरवान राम कली महला पांचवा राखण हार दयाल कोट भाव खंडे निम ख्याल सगल राधे जंत मिलिया प्रभु गुरमिल मंत जीर को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी कट कट राता मेरा प्रभ रहाओ ताकि गई मन ओट बंद ते हुई छोट हृदय जा परमानंद मन माए पय आनंद तारण तरण हर शरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राणे दार ऊंचे ते ऊंचे पार सो मत सार जित हर सिमरी जै कर कृपा जी आपे दी जै सुख सहज आनंद हर नाव नानक जपिया गुरमिल नाव राम कली महला पांचवा सगल सियाण पछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे सही।

कुरकी हटे टकाए अवरा संस बुलाए हर का नाम मांग निदान तंदर का भावे मान कुरका बचन जब मंत यह भक्त सार तत् सतगुरु पहे दयाल नानक दास निहाल राम करी महला पंजवा होवै सोई परवान अपना तज मान दिन रहन सदा गुण गाओ पूर्ण सुहाओ आनंद कर संतर जाप छड़ सियाण बहु चतराई गुरका जब मंत निर्मल रहाओ ए की कर आस भीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार पवजल उतरे पार देवन हार दार।

चर्च पुरख ते आओ ऊट बैठ थर जाप बिनस सगल संताप बैरी सब हो अमित निर्मल त्रहो वै चीत सब ते उत्तमे कर्म सगल त्रम सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन त्रा होय उधार जन्म जन्म का उतरै भार पूर्ण तेरी होवे आस चमकी कटिए तेरी फास पुर का उपदेश सुनीजै नानक सुख सह सुमीजै राम कली महला पंजमा जिसकी तिसकी करमान अपन लाए गुमान जिसका तू तिसका सब को होय तिसे रास सुख होय काहे परम परम बेगाने नाम बिना किस काम न आवे मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहो जो जो करा सोई मान लियो बिन माने रल हो बैखे जिसका भाणा लागा मीठा गुर प्रसाद विरले मन उठा वे प्रभा गोचर आप आठ पैर मन ताको जाव जिस चिताए बिन सह दुखा हलत पलत राउ जुल मुखा कौन कौन उतरे गुण गाए गन न जाई की मन पाए भूत लो सा संगत रह नानक जिसे प्राप्त करे राम कली महला पंजमा मन माए जा भगवंत गुर पूरा दिनो मंत मिटे सगल पै त्रास पूर्ण हुई आस सबर सेवा गुरुदेवा कीमत किसी कह न जाय साचे सच लख भेवा राव करण कराव ने आप तिस कहो सदा मन जाप तिसकी सेवा करनीत सच सह सुख पावे मीत सह मेरा तुपारा फिर मैं थापो थापन हारा तिस बिने वर न कोई इनका राखा सोई करके पार दास सुनी जाय अपने सेवक को दर्शन दी जाय नानक जापी जब जाप सब ते उजा का प्रताप राम करी महला पांचवा बिरथा प्रवासा लोक ठाकुर तेरी टेक अवर छुट्टी समयास जिन ठाकुर भेटे गुणदास एको नाम तय मन मेरे कार्य तेरा हुआ पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहो तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन रोही त्याया आनंद हर रूप दिखाया तिसी की ओट सदी जाके की नह जी सिमर तर करत निदान राखण नार निदान सर्व की रेण हो जाय आ मिटाय मिली जाय अनदिन त्याय नाम सबल नानक के काम राम कली महला पंजमा कारण करण करीम सर्व प्रतपार रहीम अल्लाह लख पार खुद खुदाए बड़ बेशुमार ओन भगवंत को साई खालक रव रहा सर्व ठाई रहो जगन्नाथ जग जीवन माधो पहु पंजन माया राधो ऋषि केश गोपाल गोविंद रिखी केश गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकांद वीरवान मौला तू ही एक पीर पैगंबर शेख दिलांका मालक करे हाक कुरानक देवते पाक नारायण नर हर दयाल रमत राम कटकट आधार भास देव बस सब ठाए लीला किश लखी न जाए फिर दया कर करना हार भगत भंग दी दे सृजनहार कहो नानक गुर खोए परम एको अलो पारम राम कली महला पांचवा कोट जन्म के मन से पाप हर हर जप तना ही संताप गुर के चरण कमल मन वसे महाविकार मन ते महाविकार तन ते सब नसे गोपाल को जस काओ प्राणी अकत कथा साची प्रपूर्णा ज्योति जो सुमाणी राव कृष्णा भूषम नासी संत प्रसाद जपया अवनाशी रहन दिन प्रभु से कुमानी हर मिलना की निशानी विटे जंजाल होए प्रभु दयाल गुर का दर्शन देख नाल परा पूर्वला कर्म बने आया हर के गुण तृष्णा गाया हर के संसदा प्रवाण समझना मस्तक निशान दास की रहन पाए जे कोय नाम किसकी परम गत होए राम करी महला पांचवा दर्शन को जाइया कुरबान चरण कमल हृदय तर ध्यान पूर्व संत की मस्तक लाए जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए जिस पेट मिटाए अभिमान पार में सब नदरी आवे कर कृपा पूर्ण भगवान रहा गुर की कीर्ति जपिया हर ना गुर की पद सदा गुण गाव गुर की सुरत नित कर जान गुर का शब्द सत कर मान गुर भजनी समसर सुख दुख कदे न व्यापै तृष्णा भूख मन संतोष शब्द गुर राजे जब गोविंद पढ़दे सब काजे गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर दाता दयाल भुख चंद गुर चरणी जाका मन लागा नानक दास तिस पूर्ण पागा राम कली महला पांचवा किस प्रवासा विचरै पवन हूण मुक्त रसंगी कवन राम संगीत तिस गत नहीं जान पंच बटवारे सिमीत कर मन सो कर सहज जित उतरै मीत गुण गोविंद्र भी दिन राती साध शंकर मन की प्रीत रहो जन्म बिहानो ओंकार जन्म बिहानो ओंकार अरवाद तृप्त न आवै बिख्या साध परम परमा दुख पाया तरी न जाई दुतर माया कामना आवा सुकार कुमावै आप बीजा पी खावै रखण को दूसर नहीं कोय तो इस तरह जो कृपा होय पद प्रीत पवते रो ना अपने दास को की जाय दान कर कृपा प्रगत कर मेरी शरण गई नानक प्रभु तेरी राम कली महला पांचवा ये लोके सुख पाया नहीं पेट धरम आया हर दरगाह शोभावंत उन गर्भ नाई बसंत जानी संत की मित्राई कर कृपा दीनो हर नामा पूर्व संजोग मिलाई राव गुर कह चरण चित लागा तन तन संजोग सुभागा संत की तू लागी मेरे माथे किरवे दुख सगले मेरे लाते साध की सहटा

राम करी महला पहला। कटमट देही मन बैरागी, सुरत सब तुने अंतर जागी, वाजै अनद मीरा मन लीना, कुरबचनी सचना बदीना, प्राणी राम भग सुख पाई है, गुरमुखर मीठा लागै, हर हर नाम समाई रहाउ, माया मोह बिवर्ज समाई, सगुर पेटा मेल मिलाए, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितरा ता मेरा मन तीरा, हो मैं ममता रोग न लागै, राम भग जमकावो भागै, जम जम धारण लागै मोहि, निर्मल नाम हृदय हर सोई, सद विचार पय निरंकारी, कर्म जागे दुर्मत प्रहारी, अंधन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुक्त कदे अंतर पाई, लिप्त गुफा मै रायन रारे, तस्कर पंच शब्द संगारे, भर कर जाय न मंडल लाए, सहज निरंतर रहो समाए, कर्म जाग रहे हो तूता, सत बैरागी तत परोता, जग सूता मरे आवे जाए, बिनगुण शब्द न सोझी पाए, अनंत शब्द बजा दिन राति, अवगत की गल गुरमुख जाति, तव जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहा निर्वाणी, सुन समाज सहज मन राता, ताज हम लोग बाय।

पाठ पढ़े ले लोक सुनावे तीत परमस ब्याद न जावे नाम बिना कह दे जुग पावे जतन करा बिंद के मेरा रहाई मनवाडो ला नरके पाई जमपुर बादो लह सजाई इन्ना मैं जीव बल बल जाई से साध के ते मैं देवा हटग्रे हाठ निग्रह ना तृप्त वह पीवा शब्द विचार गए गुरु सेवा मंत्र निर्मल मानव पीवा।

सच नाम ले लाई पह पंजने हद का पावन खंजन हीरा प्रभंस गाई सब कुछ आपे आवृत नानक नाम बड़े आई राम कली महला तीजा हम कुचल कुची लातो मानी मेरे शब्द मेले उतारी संतो गुरु नाम निस्तारी सच्चा नाम से अकट यंत्र करता सुवारी राव पारस परसे फिर पारस होए हर जी अपनी कृपा तारी एक पे करे फिर अभिमानी तिर जुआ बाजी हारी एक अन दिन उस करे दिन राती राम नाम इर तारी अन दिन राते सजे माते सजे हो मैं मारी पह फिर भक्त न होई कवि पह पाए भक्त सुवारी माया मोह शब जलाया ज्ञान तत् विचारी आपे आप कराई करता आपे बख्श भंडारी देश क्या गुणा कांत न पाया ओंका मा जद विचारी हर जियो जपी हर जियो सलाई पिछों आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया गुट सचे भंडारी अपने भगतां नूं आपे तुठा अपनी कृपा कर गलधारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी खबन शब्द विचारी जियो पिंड सब किसे तिसका आखण विखम विचारी शब्द लगे सही जाने सरे पहुजल पारे उतारी बिन हर साचे को पार न पावा पूजा को विचारी जो तो रिघया जो ही पाया हर शब्द सवारी काया कंचन शब्द है राती साचा नाय प्यारी काया अमृत ही भरपूरे पाया शब्द विचारी जो प्रभ खोजा से ही पावा और बूट मोए अंकारी वादी बिनसा सेवक सेवा कुरका हित प्यारी सो जोगी तत् ज्ञान विचारी हम मैं तृष्णा मारी सतगुरु दाता तिने बचाता जिसनों कृपा तुम्हारी सतगुरु ना सेवा माया लागे तू मुए अंकारी जिचर अंदर सास तिचर सेवा कीचै तै मिलिया राम मुरारी अंदर जागत रा दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी धर्म वारी वार कुमाई अपने गुर बिट्टों बलहा।

सापेक्षया प्रवसगल तुम्हारी धारणा एवं मन हर के नाम उदाहरणा रहा। किन मैं था प्यु था पे कुदरत सब करते के कारणा, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग विदारणा, नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारणा। भक्त शरण जो आवे प्राणी तिस इहां उहां न हारणा, सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारणा। तू दाता सबना जिया का आपन किया पालना, अनक बार कोट जाने ऊपर नानक वन्या वारणा। राम कली मल्ला पंजवा अष्टपदी एकोंकार सतगुर प्रसाद, दर्शन भेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई। पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सिखाई रहो, सगल दुख का डेरा भन्ना संत तूर मुख लाई। पतित पुनीत किए खिन पीतर अज्ञान अंधेर वन्याई, करण कारण सम्राट स्वामी नानक तिशनाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द ले बलाई, अंत को बिख्या ते काट्यो साच शब्द बन आई। जन्म मरण का सहसा चुका बाहुड़ कतो न ताई, नाम रसायणे मंदराता अमृत पी तृप्ताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई, पूरा गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन न पाई। नाम ने दहान पाया वड भागी नानक नरक न जाई, काल स्याणप उक्त ना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई, पुत्र कलत्र महा बिखिया मह गुर साचै लाए तराई। अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई, साच धर्म का बेड़ा बांधया पव जल पार पवाई। बेशुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई, अकाल मूर्त जुनी संभव कल अंधकार दी पाई। अंतर जामी जीन का दाता देखत त्रिपत अघाई, एकंकार निरंजन निरपाव सब जल थल रह आसमाई। भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचै माई। राम करी मल्ला पंजवा श्लोक सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक, मुखु जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मन तन राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई, संतो सतगुर खेप निभाही संतो हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो रहो। खोजत खोजत लालिक पाया हर कीमत कहन न जाई, संतो चरण कमल स्यो लागो ध्याना साचे दर्श समाई। संतो गुण गावत गावत भय निहाला हर सिमरत तृप्त गाई, संतो आत्म राम रव्या सव्यंतर कत आवै कत जाई। संतो आज जुगादी है पियोसी सब जिया का सुखदाई, संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई। संतो मीत साजन माल जो बन सुत हर नानक बाप मेरी माई, संतो राम करी मल्ला पंजवा। मन बच क्रम राम नाम चितारी भूमन खेर महायत बिखड़ी, गुरमुख नानक पार उतारी रहो। अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पहे दुष्टारी, जिस ते लागे तिने निवारे प्रभ जियो अपनी कृपा धारी। उदरे संत परे हर शरणी पच बिन से महा अहंकारी, साधु संगत एव फल पाया एक केवल नाम धारी। ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगटी जोत तुम्हारी, तुम समरथ कथ गोचर रव्या एक मुरारी। कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत ना पा जावारी, नाम दान नानक वड़ियाई त्रया संत जना रेणारी। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावनी आईया, शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक नंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया
ਤੁਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋਹ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸਿਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ, ਸਾਚੀ ਲਵੈ ਬਿੰਦੇ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਲਵੈ ਬਾਜੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆਂ, ਤੁਧ ਬਾਦ ਸਮਰੱਥ

करे बेचारिया आनंद आनंद सब कोक है आनंद गुरु ते जानिया जाने आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक एहो नंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनो और क्या करे बेचारिया एक भरम भूले फिरै दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावे कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्यारे हो कथ की करै कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईऐ तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्ने है पाईऐ हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संतो कथियो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहड़ी जरेत भरम भुलाया माया तो मोहड़ी तिने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तसै विटो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एह कुटम तुझे देखदा चलै नाही तेरे नाले साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइया ऐसा कम मुले ना कीचै जित अंत पछोताइया सत गुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम

तिसनो सदा सुख, जिस तू आवै चित तिस जम नाहीं दुख, जिस तू आवै चित तिस के काढ़िया, जिसका करता मित्र सब काज सवारिया, जिस तू आवै चित सो प्रवान जन, जिस तू आवै चित बहुता तिस धन, जिस तू आवै चित सो वड परवारिया, जिस तू आवै चित तिन कुल उधारिया। श्लोक महला पंजवा। अंदरों अन्ना बाहरों अन्ना, कूड़ी कूड़ी गावै देही धोवै, चक्र बनाए माया नो बहुतावै, अंदर मैल ना उतरै होमै फिर फिर आवै जावै, नींद व्यापिया काम संतापिया, मुखो हर हर कहावै, वैष्णो नाम कर्म हों जुगता तो कुटै क्या फल पावै। हंसा विच बैठा बगना बनई, नित बैठा मच्छी नो तार लावै, जा हंस सुभा विचार कर देखन, ता बग्गा नाल जोड़ कदे ना आवै, हंसा हीरा मोती चुगना, बग डड्डा पालन जावै, उडरिया विचारा बगला मत होवै, मन लखावै, जित को लाया तित ही लागा, किस दोष दिचै जा हर एवै पावै, सतगुर सरवर रतनी पर पूरे, जिस प्राप्त सो पावै, सिख हंस सरवर कठे होए, सतगुर कै हुक्मावै, रतन पदार्थ माणक सरवर पर पूरे, खाए खर्चै रहे तोट ना आवै, सरवर हंस दूर ना होई करते, एवै पावै। जन नानक जिस दै मस्तक भाग तुर लिखिया, सो सिख गुरु पै आवै, नाप तरिया कुटंब सब तारे, सब सृष्ट छिडावै। महला पंजवा। पंडित आखाए बहुती राही, कोरड़ मूठ जनेहा, अंदर मो नित भरम।

दिन रहनार, मंगै अमृत नाम ना आवै कदे हार, कपड़ भोजन सच रहंदा लवै तार, सो ढाडी गुणवंत जिसनों प्रभ प्यार। श्लोक महला पंजवां, अमृत बाणी अमयो रस अमृत हर का नाओ, मन तन हृदय सिमर हर आठ पैर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा है सवाओ, जन्म पदार्थ सफल होए मन मैं लायो पाओ। सुख सहज आनंद कणा प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजै दरगाह पाइय थाओ। महला पंजवां, नानक नाम ते आइय गुर पूरा मत दे, पण जप तप संजमो पण ही कडले, पण जोन पवाइय पण बख्श करे, पण दुख सुख भोगिया पण कर्म करे, पाणे मिट्टी साजकै पाणे जोत तरे, पाणे भोग पुगाइंदा पाणे मने करे, पाणे नरक सुर्ग अवतारे पाणे तरण परे, पाणे ही जिस पर भगती लाए, नानक विरले हे पौड़ी वड़ियाई।

तेरा त्रापी है। रोग शोक दुख जिस नाओ मन वसै, तिसै प्राप्त लाल जुगर शब्दी रसै। खंड ब्रह्मंड बेअंत उदाहरण हारिया, तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवा, मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया। रंग सुंबै भुली तौ सज्जन की मैं की ना पौंदी, हों तुद बिन अड ना लेंदी। महला पंजवा।

को हीरा देख हीरे करो आदेश, कहे कबीर निरंजन अलेख। दुनिया हुशियार बेदार, जागत मुसीयत होरे पाई। निगम हुशियार पहरुआ देखत, निगम हुशियार पहरुआ देखत, जम लै जाई रहाओ। नीम पयो आंब, आम पयो नीमा, केला पाका चार, नालियेर फल, सेबर पाका, मूर्ख मुगद गवार। हर पयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुन्यो ना जाई। कह कमीर कुल जात पांत तज, चिंटी होए चुन खाई।

आश्म दे परमियले पंच जना से बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले रहाओ आनीले कुंभ पराईले उदक राजकुआर पुरंदरिये हस्त विनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडियले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखियले कहत नाम दियो सुनो तिलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज बेरुदी चीत सो बारक राखियले वेद पुराण शास्त्र आनंता गीत कबेतना गाबोगो अखंड मंडल निरंकार अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजावोगो बैरागी राम गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल कै कर जाओगो रहाओ एड़ा पिंगुला और सुखमना पौने बंद रहाओगो चांद सूरज दो सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो तीर्थ देख ना जल में पैसो जी जांत ना सतावोगो अठसठ तीर्थ गुरु दिखाए कट ही पीतर नाओगो पांच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावोगो नामा कहे चित हर स्यो राता सुन समाध समाओगो माय न होती बाप न होता कर्म न होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोई न किस ही केरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ चांद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया सास्त न होता वेद न होता कर्म कहां ते आया खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा प्रणव परम तत् है सतगुर होए लखाया राम कली घर दूजा बानारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै अग्न दह काया कल्प की जै असमेद जग की जै सोना गर्भ दान दी जै राम नाम सर तउ न पूजै छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना की जै हर का नाम नित नित लीजै रहाओ गंगा जौ गोदावर जाइए कुंभ जो कैदार नाइए गोमती सहस गऊ दान की जै कोट जो तीर्थ करे तन जो हिवाले गार राम नाम सर तउ न पूजै अस दान गज दान सहजा नारी भूम दान ऐसो दान नित नित कीजै आत्म जो निर्माल कीजै आप बराबर कंचन दीजै राम नाम सर तउ न पूजै मने न कीजै रोस जमै न दीजै दोष निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै जसत राय नंद राजा मेरा राम चंद प्रणबै नामा तत् रस अमृत पीजै राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सत गुर प्रसाद पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए अनपो पाओ नंदरसै लोहा कंचन हिरन होए कैसे जो पार सेना परसै देव संसय गांठ न छूटे काम क्रोध माया मद मत्सर इन पंचों मिल लूटे रहाओ हम बड कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुनी सूर हम दाते एह बुद्ध कबै न नासी कह रविदास सबै नहीं समझस भूल परे जैसे बौरे मोहे आधार नाम नारायण जीवन प्राण तन मोरे राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सत गुर प्रसाद इड़ा पिंगला और सुखमना तीन बसै एक ठाई बेणी संगम तह पिराग मन मज्जन करे तिथाई संतो तहा निरंजन राम है गुर गम चीन बिरला कोए तहा निरंजन रमैया होए रहाओ देव स्थान क्या निशानी तह बाजे शब्द अनाहद बाणी तह चांद ना सूरज पौन ना पानी साखी जागे गुरमुख जानी उपजै ज्ञान दुर्मत शीजै अमृत रस गगनंतर पीजै इस कला जो जाने प्यो भेटै तास परम गुर देओ
दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की काटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर थाती जागत रह सो कबो न सोवे तीन तिलोक समाध पलोवे बीज मंत्र लह हृदय रह मनुआ उल्ट सुन मैंग है जागत रह ना अलिया पाख है पांचों इंद्री बस कर राख है गुर की साखी राख है चीत मन तन अर्प कृष्ण प्रीत कार पलव शाखा बिचारे अपना जन्म ना जुए हारे असुर नदी का बंद है मूल पच्छुम फेर चढ़ावे सूर अजार जरै सो निचार चरै जगन्नाथ स्यों गोष्ट करै चौ मुख दीवा ज्योत द्वार पल्लू अनंत मूल बिचकार सर्व कला ले आपे रह मन मानक रत्ना में गुह मस्तक पद्म द्वाले मणि माह निरंजन त्रिपवन तणि पांच शब्द निर्मायल बाजे टुलके चवर सांख खन गाजे दाल मल दंत हो

मन जप अहनस नाम हरे कोट कोट दोख बहु कीने सब पर हर पास तरे राव हर हर नाम जपै आराध्य सेवक पाए खरे किल बिख दोख गए सब नीकर ज्यो पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गावै मुख बोलै नर नर हरे पंच दोख असाध नगर मैं एक खिन पल दूर करे वड भागी हर नाम त्यावै हर के भगत हरे तिनकी संगत देहे प्रभ जाचो मैं मूड मुग्द निस्तरे कृपा कृपा धार जग जीवन रख ले वो शरण परे नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज हरे। नाट महला चौथा राम जप जन रामै नाम रले राम नाम जपियो गुरबचनी हर धारी हर कृपले राव हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जाप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायो सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच तातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई ज्यो देखै सास कमले उन वै कान कान कान हर गरजै मन बिगसै मोर मुरले हमरै स्वामी लोच हम लाई हम जीवन देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले। नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम त्यायो हम सतगुर चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे ज्यो चंदन संग बसै निम बिरखा गुण चंदन के बसखे हमरे अवगुण बिख्या बिखै के बहु बार बार निमखे अवगिन आरे पाथर पारे हर तारे सांग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हरणखे। नाट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीसर हर त्यायो जन पग लगे रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ शरण गे तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम राखो वड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उदर्यो प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत शिपा दुष्टार्यो प्रभ राखी पैज जन गे जो तुमरे गुण गाव है स्वामी हो बाल बाल बाल तिन गे पवन पवन पवित्र सब किए जह तूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम तुम वड वड पुरख वड गे जन नानक को दया प्रभ तारो हम सेवहा तुम जन पगे। नाट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ जगन्नाथ कृपा प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने राव हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह न सकें हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जपियो खुल खुलने ज्यो जल कुंचर तंदुए बांध्यो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावै जन नानक के प्रभ वडने। नाट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रवण प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावै हर रुड़ने जन को तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने एह पर पांच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यों सलल सलल उठै बहु लहरी मिल सलल सलल समणे
जो प्रभ किया सो तुम ही जानो, हम नह जानी हर गहने, हम बारक को रिद उस्तत तारो, हम करहा प्रभु सिमरने, तुम जल निद हर मान सरोवर, जो सेवै सब फलने, जन नानक हर हर हर हर बंछै, हर देवो कर कृपणे। नाट नारायण महला चौथा पड़ताल, एक ओंकार सत गुर प्रसाद, मेरे मन सेव सफल हर काल, ले गुर पग रेन रवाल, सब दालद पांज दुख दाल, हर हो नदर निहाल राव, हर का ग्रह हर आप सवार्यो, हर रंग रंग महल बेअंत लाल, लाल हर लाल, हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयो, हम हर की गुर की है बसीठी, हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल, हर आवते की खबर गुर पाई, मन तन आन दो आनंद पे, हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल, जन नानक हर हर मिले, पे गुलतान हाल निहाल निहाल। नाट महला चौथा, मन मिल सतसंगत शुभ बंती, सुन अकात कथा सुख बंती, सब किलविख पाप लहंती, हर हो लिखत लिखंती रहाओ, हर कीर्त कल युग विच उत्तम, मत गुरमत कथा पुजंती, जिन जन सुनी मन्नी है जिन जन, तिस जन कै हों कुर्बानंती, हर अकथ कथा का जिन रस चाख्या, तिस जन सब भूख लहंती, नानक जन हर कथा सुन तृपते, जप हर हर हर होवंती। नाट महला चौथा, कोई आन सुनावै हर की हर गाल, तिस को हों बाल बाल बाल, सो हर जन है पाल पाल, हर हो मेल निहाल रहाओ, हर का मार्ग गुर संत बतायो, गुर चाल दिखाई हर चाल, अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो, नेह कपट कमावो हर की हर काल, निहाल निहाल निहाल, ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए, जिन्ना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल, जन नानक को मत हर प्रभ दीनी, हर देख निकट हदूर, निहाल निहाल निहाल निहाल। राग नाट नारायण महला पंजवां, एक ओंकार सत गुर प्रसाद, राम हों क्या जाना क्या पावै, मन प्यास बहुत दरसावै रहाओ, सोई ज्ञानी सोई जन तेरा, जिस ऊपर रुच आवै, कृपा करो जिस पुरख विधाते, सो सदा सदा तुद त्यावै, कवन जोग कवन ज्ञान त्याना, कवन गुनीरी जावै, सोई जन सोई निज भगता, जिस ऊपर रंग लावै, साई मत साई बुद्ध स्यानप, जित निमख ना प्रभ विसरावै, संत संग लग एह सुख पायो, हार गुण सधी गावै, देख्यो अचरज महामंगल रूप, किच आन नहीं दिष्टावै, कौ नानक मोरचा गुर लाहयो, तह गर्भ जोन कह आवै। नाट नारायण महला पंचवां, दुपदे एक ओंकार सत गुर प्रसाद, उलाह नो मैं काहू ना दियो, मन मीठ तुहारो कियो रहाओ, आज्ञा मान जान सुख पाया, सुन नाम तुहारो जियो, इहां उहां हर तुम ही एह गुरते मंत्र दृढ़ियो, जब ते जान पाई एह बाता, तब कुशल खेम सब थियो, साध सांग नानक परगास्यो, आन नाही रे बियो। नाट महला पंजवां, जाको पई तुम्हारी तीर, जम की त्रास मिट्टी सुख पाया, निकसी हो मैं पीर रहाओ, तपत बुझानी अमृत बानी, तृप्ते ज्यों बारक खीर, मात पिता साजन संत मेरे, संत सहाई वीर, खुले प्रम पीत मिले गोपाला, हीरा बेदे हीर, बिसम पए नानक जस गावत, ठाकुर गुणी गहीर।
नट महला पंजवां अपना जन आप है आप उधारियो आठ पहर जन कै संग बस्यो मन ते नाहि बिसारियो रहाओ वरन चैन नाही किछ पेख्यो दास का कुल ना विचार्यो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाए सवार्यो महा बिखम अगन का सागर तिस्ते पार उतार्यो पेख पेख नानक बिगसानो पुनः पुनः बलिहार्यो। नाट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहियो कोट अपराध मिटे खिन पीतर ताका दुख ना रहियो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहयो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गहयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण परयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना कौन नानक आनंद पयो। नाट महला पंजवा चरण कमल संग लागी डोरी सुख सागर कार परम गत मोरी रहाओ अंचला गहायो जन अपने को मन बीदो प्रेम की खोरी जस गावत भगत रस उपजो माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निद आन ना पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना प्रीत ना कबहू थोरी। नट महला पंजवा मेरे मन जप जप हर नारायण कबू ना बिसरो मन मेरे ते आठ पहर गुण गायन रहाओ साधु तूर करो नित मज्जन सब किलिख पाप गवायन पूरन पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल ना लायन दोय कर जोड़ नानक दान मंगै तेरे दासन दास दसायन। नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निधान कर कृपा साधु संग मिलियो सतगुर दीनो दान रहाओ सुख दाता दुख भंजन हारा गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने बिनस्यो मूड अभिमान क्या गुण तेरे आँख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल शरण सुख सागर नानक साध कुर्बान। नाट महला पंजवा हाँ बार बार जाऊं गुर गोपाल रहाओ मोह निर्गुण तुम पूरन दाते दीना नाथ दयाल उठत बैठत सोबत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरा नानक दर्स निहाल। नाट पड़ताल महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद को है मेरो साजन मीत हर नाम सुनावे नीत बिनसह दुख विपरीत सब अर्पो मन तन चीत रहाओ कोई विरला आपन कीत संग चरण कमल मन सीत कर कृपा हर जस दीत हर भज जन्म पदार्थ जीत कोट पतित होहे पनीत नानक दास बल बल कीत। नट अष्टपदियां महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम मेरे मन तन नाम अधारे खिन पल रह न सकों बिन सेवा मैं गुरमत नाम सुमारे रहाओ हर हर हर हर हर मन त्यावो मैं हर हर नाम प्यारे दीन दयाल पे प्रभ ठाकुर गुर कै शब्द सवारे मधुसूदन जग जीवन माधो मेरे ठाकुर अगम अपारे एक बिनो बेनती करो गुर आगह मैं साधु चरण पखारे सहस नेत्र नेत्र हैं प्रभ को प्रभ एको पुरख निरारे सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर तारे हर हर कथा बनी अत मीठी ज्यो गूंगा गटक समारे रसना साध चखै पाए दूजै अत फीके लोभ बिकारे जो गुरमुख साध चखै राम नामा सब अनरस साध विसारे गुरमत राम नाम तन पाया सुन कहत्या पाप निवारे धर्म राय जम नेड़ ना आवै मेरे ठाकुर के जन प्यारे सास सास सास हैं जेते मैं गुरमत नाम समारे सास सास जाए ना मैं बिन सो बिरथा सास बिकारे
कृपा कृपा कर दीन प्रभ शरणी मोको हर जन मेल प्यारे नानक दासन दास कहत हैं हम दासन के पनिहारे नाट महला चौथा राम हम पात्र निर्गुनियारे कृपा कृपा कर गुरु मिलाए हम पाहन शब्द हम पाहन शब्द गुर तारे रहाओ सतगुर नाम दृढ़ाए अत मीठा मैं लागर मलगारे नामै सुरत वजी है दह दिस हर मुश्की मुश्क गंधारे तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुर नीके बचन समारे गावत गावत हर गुण गाए गुण गावत गुर निस्तारे विवेक गुरु गुरु समदर्सी तिस मिलिया शंक उतारे सतगुर मिलिया परमपद पाया हो सतगुर कै बलिहारे पाखंड कर कर भरमे लोभ पाखंड जाग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवै जम काल खड़ा सिर मारे उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के विस्थारे आई रैन भया सुपनंतर बिख सुपने पी दुख सारे कलर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ा के खलवारे साकत नर सब भूख पुखाने दर ठाडे जम जंदारे मन मुख करज चढ़िया बिख पारी उतरे शब्द विचारे जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पाग लंगवारे जगन्नाथ सब जंत्र उपाए नक खीनी सब नाथ हारे नानक प्रभ खिंचै दिव चलिया ज्यों भावै राम प्यारे नट महला चौथा राम हर अमृत सरना वारे सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको मिल कलमल पाप उतारे राहो संगत का गुण बहुत दिखाई परसुआ गनक उधारे परसन परस भय कुबिजा को लै बैकुंठ सधारे अजामल प्रीत पुत्र प्रतकिनी कर नारायण बुलारे मेरे ठाकुर कै मन पाए पावनी जम कंकर मार बिदारे मानुख कथा कथ लोक सुनावे जो बोले सो ना बिचारे सतसंगत मिले तं दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारे जब लग जियो पिंड है साबित तब लग किछ ना समारे जब कर मंदर आग लगानी कड़कूप कडह बनिहारे साकित स्यों मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे साकत बचन बिछुआ ज्यों डसिया तज साकत परै परारे लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे पूर्व जन्म पर चून कमाए हर हर हर नाम प्यारे गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लालन लाल गुलारे जैसा रंग देहे सो होवै क्या नानक जंत विचारे नट महला चौथा राम गुर शरण प्रभु रखवारे ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो कर ऊपर कड निस्तारे रहाओ प्रभ के सेवक बहुत अतनीके मन शरदा कर हर तारे मेरे प्रभ शरदा भगत मन पावै जन की पैज सवारे हर हर सेवक सेवा लागै हर हर सेवक सेवा लागै सब देखै ब्रह्म पसारे एक पुरख एक नदरी आवै सब एका नदर निहारे हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे आप दयाल दया दान देवै बिच पाथर कीरे कारे अंतरवास बहुत मुश्काई ब्रह्म भूला मिर्ग सिंगारे बन बन ढूंढ ढूंढ फिर थाकी गुर पूरे घर निस्तारे बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच वाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन प्रतख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजया खावारे ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लुकी जारे प्रभ को जन अंतर रिद लोचै प्रभ जन के सांस निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जाग निस्तारे अपन आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे श्रेष्ठ सवारे जन नानक आपे आप सब वरत कर कृपा आप निस्तारे
नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उबारे ज्यों पकर द्रौपदी दुष्टा आनी हर हर लाज निवारे रहाओ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मुको हार गुर मेल सवारे साकत कर्म पानी ज्यो मथिया नित पानी चोल चुलारे मेल सत संगत परम पद पाया कट माखन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारे मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर अलख लखारे नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारे संत जना की रेण मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया रिद अंतर हर जन पारे शरदा शरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस बरन नहीं साको तुम मंदिर हम निक कीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन धीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुणियारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देवो सब तिसना भूख निवारे पचह पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पांच भूत सबल हैं देही गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पावो सतसंगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर सुमेर मोर बहु नाचै जब उनवै कान कन हारे साकत को अमृत बहु सिंचो सब डाल फूल मिसुकारे ज्यों ज्यों निवै साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोलै पार उपकारे संत संत मिलै मन बिगसै ज्यों जल मिल कमल सवारे लोभ लहर सब स्वान हलक है हलक्यो सबै बिगारे मेरे ठाकुर कह दीवान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारे राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारे नानक मैं तार अवर न काई मैं सतगुर गुर निस्तारे छक्का एक

अब अनेक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रभ राया रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया, हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया। शरणागति प्रभ पालते हर भगत वशल नाया, प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर राख लियो तराया। हर चेत रे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन्म मरण निवार ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया। हर पतित पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार

राम नाम रस लागा, कमल प्रगास भया गुर पाया, हर जपियो भ्रम पौ पागा रहाओ, पै पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किल बिखीन पए शांत आई, हार उर तारियो वडपागा, मन मुख रंग कुसुंभ है कछुआ, ज्यो कुसुम चार दिन जागा, खिन मैं बिन सजाए प्रतापै, दंड धर्म राय का लागा, सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी, ज्यो रंग मजीठ बहु लागा, काया कापर चीर बहु फारे, हर रंग न लहै सपागा, हर चार्यो रंग मिलै गुर सोभा, हर रंग चलू लह रंगा, जन नानक तिनके चरण पखारै, जो हर चरणी जन लागा। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन भज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नामै, मत गुरमत राम रसाला रहाओ, गुरमत नाम त्याई हर हर, मन जपिया हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनबाला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला, जिन हर नाम ते आया तिन चुकै सर्ब जंजाला, तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला, हम बारक किछु ना जानहूं, हर मात पिता प्रतपाला, कर माया अगन नित मेलते, कर माया अगन नित मेलते, गुर राखे दीन दयाला, बौ मैले निर्मल होया, सब किलविख हर जस जाला, मन आनंद पया गुर पाया, जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हार भज सब किलविख काट, हार हार उर धार्यो गुरपुरै, मेरा सीस कीजै गुरवाट रहाओ, मेरे हार प्रभ की मैं बात सुनावै, तिस मन देवो कट काट, हार साजन मेल्यो गुरपुरै, गुर बचन बेकानो हट हाट, मकर पराग दान बहु किया, शरीर दियो अद काट, बिन हर नाम को मुक्त ना पावै, बहु कंचन दीजै कट काट, हर कीरत गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट, हर कीरत गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पौ भागा, लजपानी मटकी फाट, त्रिकुटी फोर परम पौ भागा, लाज पानी मटकी माट, कलजुग गुर पूरा तिन पाया, जिन तुर मस्तक लिखे ललाट, जन नानक रस अमृत पिया, सब लाथी भूख तिखाट, छक्का एक। माली गौड़ा महला पंजवा, एक ओंकार सत गुर प्रसाद, रे मन टहल हर सुख सार, अवर टहलां झूठियां नित करे जाम सिर मार रहाओ, जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पौजल तारिया हर संत पुरख अपार, नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार, एक परम भूले साकता बिन गुर अंध अंधार, तुर होवना।

नमस्कार जास जपत होवत उधार रहाउ जाकै सिमरन मिटै तंद जाकै सिमरन छूटै बंद जाकै सिमरन मूर्ख चतुर जाकै सिमरन कुलह उधर जाकै सिमरन पौ दुख हरै जाकै सिमरन अपदा टरै जाकै सिमरन मुचित पाप जाकै सिमरन नहीं संताप जाकै सिमरन रिद विगास जाकै सिमरन कमला दास जाकै सिमरन निद निधान जाकै सिमरन तरे निदान पतित पावन नाम हरि कोट भगत उधार करी हर दास दासा दीन शरण नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सुहाई हर को नाम साध संगत पाज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख खीर जैसे रण में सखा प्रात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरख बरस मेघ जैसे पालन शरण सेंग गरुड़ मुख नहीं सर्प तरास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हृदय माहे जैसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाद तुही ऊच मूचो बौ अपार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा एही हमारा सफल काज अपने दास को लेह निवाज रहाओ चरण संत हैं मात मोर नैन दर्श पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसै मेरे चीत संत आग्या मन है मीठ मेरा कमल बिगसै संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास संत बचन मेरे मने मंत संत प्रसाद मेरे बिखै हंत मुक्त जुगत एहा निदान प्रभ दयाल।

पंजवा सब कै संगी नाहीं दूर करन करावन हाजरा हजूर राव सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सुख कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जाके घर सगले समाहे जिसते बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो किरपाल सदा धर्म जाके दीवान बेमोहताज नहीं किछ कान सब किछ करना अपन आप रे मन मेरे तूता को जाप साध संगत को हो बलिहार जास मिल होवे उधार नाम संग मन तने रात नानक को प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजवा दुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद हार समरथ की शरणा जियो पेंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाई है जीवन का मूल रव रहया सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल विकार

दीन बांधव भगत वशल सदा सदा कृपाल राव। आद अंते मद तू है प्रभ बिना नहीं कोए, पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ, बलिहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ। माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सत गुर प्रसाद। तन तन ओ राम बेन बाजे मधुर मधुर तन अनत गाजे रहाओ। तन तन मेघारो मावली तन तन कृष्ण ओडे कांबली। तन तन तू माता देव की जह ग्रह रमैया कबलापति। तन तन बन खंड बिंद राबना जय खेल श्री नारायण। बेन बजावे गोधन चरे नामे का स्वामी आनंद कर। मेरो बाप माधो तू तन के सो सांभलियो बिठो लाए रहाओ। कार तरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारियले। दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारियले। गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारियले। ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरनागत आयले। सब काट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै रे रहाओ। एकल माटी कुंजर चींटी भांजन है बहनाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम काट काट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसा रे। प्रणवै नामा पय नहकामा को ठाकुर को दासा रे। राग मारू महला पहला कर पहला चौप

मिल संगत शरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख गुर पूरै हर पाया हलत पलत पात राख रहा हर हर नाम त्याई हर कीरत गुरमुख चाख तन धरती हर बीजिया विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुरपुरै हर रस चाख मन मुख तृष्णा भर रहे मन आसा दै दिस बौलाख बिन नावै त्रिग जीव दे विच विष्टा मन मुख राख ओय आवै जाय पवाईऐ बो जोनी दुर्गंध पाख त्राह त्राह शरणागति हर दया तार प्रभ राख सतसंगत में लाप कर हर नाम मिलै पत साख हर हर नाम तन पाया जन नानक गुरमत पाख मारू महला चौथा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर भगत परे भंडारा गुरमुख राम करे निस्तारा जिसनों कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली हर हर नाम जपो मेरे जियड़े जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचै हर देह पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरा मन भावै जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोलै हर नाम पवित्र सब किता जे हर सुप्रसन्न होवै मेरा स्वामी हर सिमरत माल लह जावै जियो माया मोह बिखम है भारी क्यों तरिया दुत्तर संसारी सतगुर बोहित दए प्रभ साचा जप हर हर पार लंघावै जियो तू सर्वत्र तेरा सब कोई जो तू करै सोई प्रभ होई जन नानक गुण गावै बेचारा हर पावै हर थाए पावै जियो मारू महला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किलविख काटै हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चलदियां नाल सखाई जियो जिसनों कृपा करे सो त्यावै नित हर जप जापै जप हर सुख पावै गुर प्रसादी हर रस आवै जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ निरभौ निरंकार सत नाम जग मैं श्रेष्ठ उत्तम काम दुश्मन दूत जम काल ठेह मारो हर सेवक नेड़ ना जाई जियो जिस ऊपर हर कामन मान्या सो सेवक चौं जुग चौं कुंट जान्या जे उसका बुरा कहे कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मैं एक निरंजन करता सब कर कर वेखै अपने चलता जिस हर राखै तिस कौन मारे जिस करता आप छुड़ाई जियो हाँ आनंद नाम लई करतारे जिन सेवक भगत सब निस्तारे दस अठ चार वेद सब पूछो जन नानक नाम छुड़ाई जियो मारू महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद।